0: इंग्लैंड का पादरी जोसेफ करुणा के आध्यात्मिक शक्ति में अटूट विश्वास रखता था। दीनहीन और बेसहारा लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। एक बार की बात है, एक दिन एक बहुत ही कुख्यात अपराधी पुलिस की निगाहों से बचता हुआ पादरी के घर पहुंच गया। पादरी ने उसे शरण दी, भोजन कराया और रात को आराम करने की भी स्वीकृति दी। अपराधी ने देखा कि पादरी की मेज पर चांदी के दो दीपदान रखे हुए हैं। पादरी सो गया तो उसने दीपदान उठाकर जेब में रखे और वहां से भाग निकला। वो कुछ ही दूर जा पाया था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने पुलिस को बता दिया कि वो दीपदान उसने पादरी के घर से चुराए हैं। पुलिस उसे पादरी के पास लेकर आई। पादरी को दीपदानों की चोरी का पता लग गया था। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, इसे छोड़ दीजिए, ये दीपदान तो मैंने अपनी इच्छा से इसको दिए थे। पादरी के शब्द सुनकर चोर पानी पानी हो गया। उसने उसी समय प्रभु में अपना दिल लगाने का निश्चय किया और भविष्य में अपराध न करने का संकल्प लिया। अब वो पादरी जोसेफ के शिष्य के रूप में दीनहीनों की सेवा का कार्य करने लगा।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जिंदगी जीने के तीन नियम। जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि हम दुनिया भर की उम्मीदों के हिसाब से जीते रहते हैं। कई बार हमारे कंधों पर इन उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। हम ताउम्र सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग नाराज ही छूट जाते हैं। अब बताइए, क्या जरूरत है सबको खुश करने की? जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो सफलता मिलने पर हम स्वयं ही हमारे लिए ही तालियां बजाने लग जाते हैं, बताइए। नियम नंबर दो, सफलता कोई जादुई चाबी नहीं है भैया, जो हमारे सामने किसी चांदी की थाल पर रखकर परोस करके दे दी जाएगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, उसमें समय लगेगा और पसीना बहाना पड़ेगा। हमारी हर तरह की कोशिशों का जोड़ ही हमारी सफलता है। हर दिन को कोशिशों के साथ ही हम खुद को बदलते हुए देख सकते हैं। समझदार व्यक्ति कहते हैं, सफलता उन छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ है जो हम रोज करते ही रहते हैं। नियम नंबर तीन, हार का डर हमें जीवन में कुछ बड़ा करने से रोकता रहता है। गौर कीजिए, इसी डर के कारण हम चुनौतियों से भागते हैं, बहाने ढूंढते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें मजबूत तो होना पड़ेगा। जब हम पूरी तरह से अपना दिल और दिमाग किसी काम के पीछे लगा दें, तब हमें कोई रोक नहीं सकता। सोचिए ना। फिर मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन दोस्तों हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर उसको देखने की जरूरत है। आइए मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे ही हंसना सिखाने वाले भाई से जो मोटिवेशन के जिंदा मिसाल हैं। इसराइल पर हमास के हमले और तेल अबीब की जवाबी कार्रवाइयों ने अहमद की योजनाओं को भी खाक कर दिया। 5 दिन वो और उनके साथी एक शिविर में खुद को जिंदा रखने के लिए कैद रहे, मगर अहमद ऐसी स्थितियों में पहले भी गुजर चुके थे। सो पहुंच गए नजदीकी स्कूल में। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। शायर निदा फाजली से गाजा के अहमद अलगरजी की शायद ही कभी मुलाकात हुई होगी, लेकिन लगता है उन्होंने इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लिया है। बम के धमाकों से दहलती हुई गाजा पट्टी में वो बच्चों में खुशी बांट रहे हैं, उन्हें जीने के गुर सिखा रहे हैं, डर से पार पाने की ताकत दे रहे हैं और दिमागी तौर पर उन्हें मजबूत बना रहे हैं। और ये सब वो कर रहे हैं नृत्य के अपने हुनर और नर्सिंग की तालीम की मदद से। जी हां, वो एक शानदार डांसर हैं। संभवतः इसी कारण द गार्जियन उनमें द इंस्पायरिंग पीपल बनने की संभावनाएं देख रहा है। अहमद के लिए वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, गाजा के ही कई शिविरों में उनका बचपन बीता था। अपने भाई से उन्होंने ब्रेक डांस सीखा जब वो सिर्फ 15 साल के थे। उनके भाई सऊदी अरब में इस डांस से दिल लगा बैठे थे और वापस लौटने पर उन्होंने अहमद को भी ब्रेक डांस सिखाया। अहमद ने भी खुशी खुशी इसे सर माथे लिया। कमरे में, गलियों में, जहां कहीं भी उन्हें जगह मिलती वो नाचने लगते। इस जुनून ने उनके कई नए दोस्त बना दिए जो पराधीन गाजा में आजादी महसूस करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। फिर क्या था, 2004 में कैंप्स ब्रेकेज की नींव रख दी गई। इसमें करीब 10 डांसर्स थे। इस ग्रुप का मकसद साफ था, खुद को अभिव्यक्त करना, सांस्कृतिक रूढ़िवादिता का विरोध करने और उन तमाम बंधनों को तोड़ने के लिए नाचना जिनसे वे खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे। अहमद को ब्रेक डांस से इतना प्यार हो गया कि नर्सिंग से स्नातक करने के बाद उन्होंने आगे पढ़ने की नहीं सोची, हालांकि यही पढ़ाई बाद में उनकी हमराह बनेगी, ऐसा भी उन्होंने कहां सोचा होगा। कोई भी संकीर्ण समाज ऐसे किसी शुरुआत को आसानी से स्वीकार नहीं करता। अहमद ने तो खूब ताने सुने, पर वो जानते थे कि डांस से भी मंजिल पाई जा सकती है। वो गुर्बत में जी रहे लोगों का गम बांटना चाहते थे, खुली जेल बन चुके गाजा को जीने का सलीका सिखाना चाहते थे। इसमें साल 2009 उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उनकी टीम को सेव द चिल्ड्रन के साथ एक प्रोजेक्ट करने का मौका मिला जो ऑपरेशन कास्ट लीड के पीड़ित बच्चों को मनोवैज्ञानिक मदद पहुंचाने के लिए शुरू किया जाना था। संयुक्त राष्ट्र का मानना था कि साल 2008-2009 में इसराइल द्वारा गाजा में किए गए इस सैन्य ऑपरेशन में 333 बच्चों सहित 1383 फिलिस्तीनी मारे गए थे। अहमद समझ गए कि धमाकों से दहले बचपन को संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। उनका समूह नृत्य के माध्यम से फिलिस्तीनी समाज में मौजूद भेदभाव को मिटाने, उनमें एकता बढ़ाने, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए जागरूकता फैलाने में जुट गया। गाजा पट्टी पर आयद इजरायली बंदिशों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाने लगा। कहा जाता है कि इन्हीं सबसे चिढ़कर उनके डांस सेंटर को भी बम से उड़ा दिया गया। पर तब तक अहमद इतने प्रशंसक कमा चुके थे कि उनकी एक आवाज पर $10,000 की रकम जुटा ली गई और साल 2012 में एक नया डांस सेंटर बनकर खड़ा हो गया। गाजा में मुश्किलें बढ़ने के बाद अहमद 2015 में जर्मनी चले गए, पर उनका दिल मातृभूमि में ही अटका रहा। इसी कारण कई बार वो वापस लौट आते और नई प्रतिभाओं को नृत्य सिखाते। अक्टूबर 2023 में भी इसी मकसद से वो गाजा आए थे। वहां युवा नर्तकों का एक शो था, मगर इसराइल पर हमास के हमले और तेल अबीब की जवाबी कार्रवाई ने उनकी योजनाओं को खाक कर दिया। फर्ज कीजिए आप कहीं जाते हैं और आपको पता चलता है कि अनिश्चितकालीन जंग में घिर जाने के कारण अब वहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। ध्वंस भी इस कदर कि कौन सी मिसाइल कहां धमाका कर जाए कोई नहीं जानता, तब आप क्या करेंगे। अहमद के सामने भी यही सवाल था।
पांच दिन वो और उनके साथी एक शिविर में खुद को जिंदा रखने के लिए कैद रहे, मगर ज्यादा दिनों तक बैठे रहना भी अहमद को मंजूर नहीं था। वो इस तरह के हालात से पहले भी गुजर चुके थे, तो वो पहुंच गए संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे एक नजदीकी स्कूल में। वहां बच्चों के लिए कार्यशालाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिल गई। शुरुआत में बच्चे झिझके जरूर, लेकिन जल्द ही अहमद और उनके साथियों के फ्लिप और ट्विस्ट पर भी वो नाचने लगे। अब तो अहमद इन बच्चों के भाई हैं, हालांकि उन्हें अपने शुरुआती नाम शार्क यानी कि उस्ताद ही पसंद है। आज अहमद हर जगह जाते हैं जहां गाजा नागरिक शरण लिए हुए हैं और बच्चों के लिए डांस करते हैं। वो और उनके दोस्त पूरी कोशिश करते हैं कि यहां के मासूमों में मासूमियत बची रहे। यहां तक कि नजदीक गिरे मिसाइल से अपने एक छात्र की मौत के बाद भी अहमद के कदम रुके नहीं हैं। आखिर उन्हें डर क्यों नहीं लगता? एक साक्षात्कार में अहमद ने बताया कि मैंने भी बचपन में ये सब देखा है। बम धमाके से कोई बच्चा कितना भयभीत हो जाता है, ये मैं जानता हूं। मैं नहीं चाहता कि हमारी नई पीढ़ी ये सब झेले। अब तो हर धमाके के बाद मैं खुद को कहीं अधिक मजबूत महसूस करता हूं। तो देखा दोस्तों आपने, गाजा जैसी मुसीबत में भरी हुई जगह में भी अहमद जैसा इंसान सिर्फ डांस करके पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और प्रेरणा का संदेश फैला रहा है। क्या दोस्तों हम भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं? दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें। दोस्तों ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।

0: डर विश्वास के विपरीत है। जब हम डरते हैं तो हम भगवान को ये संदेश देते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, डरने की आवश्यकता नहीं।
1: कन्नौज राज की एक विधवा ब्राह्मणी बहुत ही गरीबी के बावजूद अपने 5 पुत्रों को गुरुकुल में अच्छी शिक्षा दिला रही थी। वो रोज चरखे पर सूत कातकर अपना और पुत्रों का जीवन यापन करती थी। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया उसने। कन्नौज के एक धार्मिक सेठ ने ब्राह्मणी की गरीबी में दिन गुजारने की बात सुनी तो वो उसके पास गए। बड़ी ही विनम्रता से उन्होंने कहा, क्या मैं आपकी कुछ आर्थिक मदद करके अपने को धन्य कर सकता हूं? ब्राह्मणी ने कहा, सेठ जी, मैं गरीब बिल्कुल नहीं हूं। मेरे पास तो 5 अमूल्य रत्न है। आपकी सहानुभूति के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। सेठ जी ने कहा, मुझे अपने अमूल्य रत्न तो दिखाइए। कुछ ही देर बाद उसके 5 बेटे गुरुजी के आश्रम से वापस लौटे। आते ही उन्होंने मां के चरणों को स्पर्श किया। उसके बाद सामने बैठे हुए सेठ जी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ब्राह्मणी ने संस्कृत में कहा, पश्यमय पंच रत्नानी। और सेठ उन 5 रत्नों को देखकर कह उठे, वास्तव में माताजी, आपके इन अनूठे मातृभक्त संस्कारी 5 रत्नों के होते हुए आपको दरिद्र समझना मेरी भारी भूल थी। जिसकी संतान आज्ञाकारी, संस्कारी और योग्य हो, उससे बड़ा धनवान कौन होगा।

एक बार कुछ शिक्षक आचार्य महाप्रज्ञ के सत्संग में पहुंचे। महाविद्यालय के एक प्राचार्य ने कहा, आचार्य जी, अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा का भी अवमूल्यन होते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब स्कूल कॉलेज तो बिजनेस बनते जा रहे हैं, आपकी नजर में इस पतन के क्या कारण हो सकते हैं? आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, ज्ञान का तो सार है आचार। दूध में मक्खन ना निकले तो दूध को सारोहीन मानना पड़ेगा। अगर दूध से मक्खन ना निकले तो दूध बेकार है। नैतिकता पर ध्यान नहीं देने के कारण ही आज शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट दिखाई दे रही है। जब से शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना और नौकरी करने के लिए सीमित हो गया है, तब से यही गड़बड़ी शुरू हो गई। गुरुदेव आचार्य तुलसी ने भी कहा है, शिक्षा केंद्रों से ऐसे छात्र निकलने चाहिए जिनका आदर्श जीवन हो और वो जिस क्षेत्र में जाएं वहां नैतिकता का आदर्श स्थापित करें। लेकिन आज तो डिग्री पाने के लिए और फिर उसके बाद धन कमाने की होड़ चल पड़ी है। कोरे बौद्धिक विकास से न तो राष्ट्र का भला होगा न ही समाज का। बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी जरूरी है। जब तक नैतिक मूल्य सदाचार की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसे उद्देश्य नहीं बनाया जाएगा।

0: तक देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता, आप कुछ भी कर लें।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। आज की बात थोड़ी पुरानी है, इतनी पुरानी कि जब ये वाकया हुआ था तब मोबाइल फोन्स नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम डीएम नहीं था, और फिर भी एक लड़का रोज एक घर के सामने खड़ा रहता था और एक बालकनी से मिलने वाला सिर्फ एक छोटा सा इशारा उसकी पूरी शाम बदल देता था। आज हम 1977 के एक मैगजीन पेज पर छपी एक याद पढ़ रहे हैं, रूपन देसाई की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी जिसका टाइटल था अ ब्यूटिफुली पेनफुल एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे लगता है इस कहानी को एक और नाम दिया जा सकता है, जब एक बालकनी पूरी बात कह देती है। कहानी में एक नाम बार बार आता है, मुकेश, और एक गुजराती लड़की जिसके साथ मुकेश जी को मोहब्बत थी। लेकिन यहां ट्विस्ट कोई फिल्मी विलन का नहीं था, ट्विस्ट था परिवार का फैसला। लड़की के पेरेंट्स को जब पता चला कि उनकी बेटी एक नॉन गुजराती लड़की से प्यार करती है और वो लड़का फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने दोनों की मुलाकात बंद करा दी। आज हम इस बात को सुनकर शायद कहेंगे तो क्या हुआ, फोन कर लेते, मैसेज भेज देते, वीडियो कॉल कर लेते। लेकिन 1977 में ब्लॉक करने के लिए भी फोन नहीं और कांटेक्ट करने के लिए भी व्हाट्सएप नहीं था। तो मुकेश ने क्या किया, वो उस लड़की के घर के सामने फुटपाथ पर बैठने लगे। दिन फिर दिन और आसपास के लोगों के लिए वो फुटपाथ एक नया नेबरहुड टॉपिक बन गया। एक दिन रूपन देसाई अपने एक दोस्त के घर गई हुई थी, तब उनकी दोस्त ने उन्हें बालकनी पर बुलाया और नीचे बारिश हो रही थी। फुटपाथ पर मुकेश खड़ा था, ना उसके पास छाता था, ना कोई ड्रामा था, बस रेलिंग पकड़कर खड़ा था इंतजार में भीगा हुआ। और बालकनी से नीचे देखती हुई वो लड़की, हर बार जब वो बाहर आती मुकेश अपना सर थोड़ा सा ऊपर करता और वो बहुत हल्का सा सर हिलाकर उसे नीचे आने का इशारा करती। बस इतना ही, ना फोन, ना मैसेज, ना बार बार का ये आई लव यू बाबू, आई लव यू सोना, ना कोई लंबी स्पीचेस, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा। एक नजर, एक छोटा सा इशारा और सामने वाला समझ गया। और यहीं पर मुझे लगता है पुरानी दुनिया और आज की दुनिया में एक अजीब सा फर्क है। आज हमारे पास कहने के लिए हजार तरीके हैं, हजार बातें हैं, लेकिन कभी कभी सुनने वाला ही नहीं होता। उस जमाने में शायद लव्स बहुत कम थे, शर्म बहुत थी, लेकिन इंतजार, इंतजार बहुत था। और दोस्तों, इस कहानी का एक बहुत खूबसूरत एंगल है। इस पूरे सीन को देख रही थी रूपन देसाई और उनकी एक 12 साल की सहेली। दो छोटी लड़कियां बालकनी में खड़ी हुई नीचे बारिश में खड़े एक जवान को देख रही हैं और उनके बचपन के दिमाग में एक ही थॉट है, यार ये मोहब्बत होती क्या है। उन दोनों को वो इंतजार इतना ड्रामेटिक और रोमांटिक लगा कि उन्होंने मन ही मन में सोचा, काश काश हम भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं और हमें भी ऐसी कोई कहानी मिल जाए। कितनी गुदगुदाने वाली बात है ना।

0: बचपन में हम बड़े होने की जल्दी में होते हैं और बड़े होकर कभी कभी सोचते हैं, यार बचपन ही ठीक था। लाइफ का ये भी बहुत अजीब सा मेन्यू है, जो टेबल पर नहीं होता हमें वही चाहिए। लेकिन इस कहानी में एक बहुत खास बात है, मोहब्बत का शोर नहीं है, उसकी खामोशी है। मुकेश ने कोई बड़े डायलॉग्स कभी नहीं बोले, लड़की ने कोई फिल्मी प्रॉमिसेस नहीं किए, बस एक बालकनी थी, एक फुटपाथ था, बारिश थी और दो लोगों के बीच का वो छोटा सा संकेत। कभी कभी कम्युनिकेशन का मतलब बहुत सारे शब्द नहीं होते, एक आंख का कोना, हाथ का इशारा, सर का एक हल्का सा झुकना और कभी मैं यहीं हूं, बस बात पूरी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ के जाती हूं, अगर आपको किसी को अपनी बात कहनी हो और आपके पास सिर्फ एक जेस्चर हो, ना फोन, ना मैसेज, ना वॉइस नोट, तो आप क्या करेंगे? हाथ हिलाएंगे, मुस्कुराएंगे या बस एक नजर ही काफी है? और दूसरा सवाल, क्या आज के जमाने में हम बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं? मैसेजेस से, इमोजीज से, आलसी लोग, वॉइस नोट से, कॉल से, वीडियो कॉल से, स्टोरीज से, स्टेटस से, फिर भी कभी कभी सामने वाले को समझ ही नहीं आता, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? शायद प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, हमारी आदत की है। हम हर बात एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हर फीलिंग को कैप्शन चाहिए, हर पल को फोटोग्राफ चाहिए और हर रिश्ते को एक स्टेटस अपडेट चाहिए। लेकिन 1977 की उस बालकनी में एक छोटा सा सर हिलाना ही पूरा मैसेज था। तो दोस्तों, आज की बातें इधर की उधर की किसी बड़े डायलॉग पर खत्म नहीं होती, वो वहीं रुकती है, एक बारिश भरी शाम में, एक फुटपाथ पे, एक बालकनी के नीचे, जहां एक लड़का चुपचाप खड़ा था और एक लड़की ने बस हल्का सा सर हिलाया और दो 12 साल की लड़कियों ने बालकनी से वो मंजर देखा और शायद पहली बार जाना मोहब्बत की डिक्शनरी में हर वर्ड लिखा हुआ नहीं होता, कुछ मीनिंग्स सिर्फ इशारे समझने वाले जानते हैं, उनकी आपस की बात है। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन एसएन रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आपके पास भी अगर कोई ऐसी पुरानी याद है ना, जिसमें बात कम हुई हो लेकिन इशारा बहुत कुछ कह गया हो, तो संभाल के रखिए, क्योंकि वो कहानियां लिखी नहीं जाती, बस एक याद में रह जाती हैं। मिलूंगी फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक बातें करते रहिए, इशारे समझते रहिए और बातें इधर की उधर की सुनते रहिए। नमस्कार।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने पूछा, तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? छात्र ने कहा, सर क्योंकि पढ़ाई सिर्फ दो वजहों से की जाती है। टीचर ने कहा, अच्छा जनाब, तो कौन सी हैं ये दो वजहें, जरा बताना। तो छात्र ने कहा, या तो डर से या शौक से। मैं बिना वजह कोई शौक रखता नहीं और डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं।

अब बातें इधर की उधर की में वक्त आ गया है एक खास कहानी का। हर कहानी अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन लेकिन दोस्तों कुछ कहानियां इसलिए भी और स्पेशल बन जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने वाला दिल से उनसे जुड़ा होता है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जो लेकर आए हैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, एक किस्सा, एक एहसास, एक याद, एक कहानी, बिल्कुल अपनी आवाज में। तो चलिए खामोशी से सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे।

This doha is from Shlok Nava Mahla from the Guru Granth Sahib. Many, many years ago, in our Vedanta class, we were reflecting upon this Japji Sahib alongside with Adi Shankara's Bhaja Govindam. Because more or less they speak the same language, of the same facts, of the same things you should do in life, not do in life, vagera vagera. तो उसके बाद मुझे सबसे पहला अवसर मिला अमृतसर जाने का. For a long time I have been waiting for this opportunity, और जैसे ही मैंने ये गाया सेशंस में, उसके ख़त्म होते ही बुलावा आ गया मेरे लिए. तो दिवाली की छुट्टियां थी और हम पूरा ही परिवार दिल्ली गए, वहाँ कुछ दिन बिताए और फिर वहाँ से अमृतसर गए. अब दिवाली की शाम हम लोग हरमंदर साहब में थे. And at every point, you know, I was getting so mesmerized by the whole atmosphere. इतनी सारी आतिशबाजी हो रही थी और लोगों की भीड़ तो ना पूछो. अगल बगल के गांव से भी लोग आ रहे थे दर्शन के लिए, मत्था टेकने के लिए. I thought, और कौन इतना fortunate हो सकता है. And as soon as I entered the inner premises, वो जो पॉन्ड है उधर, वो देखा, उसके दर्शन. एंड आई सॉ सो मेनी ऑफ देम टेकिंग अ डिप इन दैट. एंड देन एज सून एज वी केम टू द साइड ऑफ द मेन गेट, इट वॉज पैक्ड. दैट होल आइल वॉज पैक्ड विथ पीपल.

And we had to take a train at 9 p.m. to come back to Delhi and then to Mumbai. So my husband was getting restless. He said, "Is bheed mein hum kaise ja payenge? Aur darshan karke nikalne tak ka samay nahi hai. Abhi already 7:30 baj gaye hain. We have to go back to the hotel, pack our bags, and then go to the station. Train nahi milegi. So we have to go back." And I just looked at the pinnacle, you know, that ek onkar sign jo wahan pe hota hai, it was fully lit up. And then I said, "You called me here and now you are saying I cannot even see you. How fair is this? Ye to sahi nahi hai." फिर मैंने इधर उधर देखा, भीड़ में यूं ही लाचार होके देख रही थी कि मिल जाए दर्शन तो अच्छा है। ऐसे में मेरे बगल में एक औरत खड़ी थी, उसने कहा कि क्या बात है बहन जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने कहा नहीं, हमें ट्रेन लेनी है और यहाँ इतनी भीड़ है, मैं कैसे दर्शन कर पाऊँगी या नहीं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तो उन्होंने कहा आगे वालों ने दसो, वो रास्ता दे देंगे आपको, आप बताओ कि आपको गाड़ी लेनी है, कोई हर्ज नहीं। तो मैंने एक दो को बोल के देखा तो वो टस से मस भी नहीं हुए, एंड सम ऑफ देम गेव मी अ डर्टी लुक कि भाई कौन है तू, कहाँ से आई है, क्यों जाएगी आगे। और यही सब कुछ चल रहा था कि अचानक यू नो वन tall man, 6-footer must be, with a grey beard, और वो माथे पे साफा बंधा हुआ, just like बाबाजी looks, and with a pile of wooden twigs on his head, he came in from nowhere, I don't know from where, he said, क्या बात है बहन जी, आप मेरे पीछे आओ। And I didn't bother about husband, children, anything. I just went behind that guy and I was straight inside the altar, bowing down to the samadhi there. And andar kirtan chal raha tha aur I was like in seventh heaven. Phir 5 minute main wahan khadi rahi, sara wo jo vibe tha wo absorb kiya. और बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया बाबा जी को कि मुझे दर्शन दे दिए। एंड जैसे ही मैं बाहर निकली तो ऐसी डांट पड़ी कि टाइम का अंदाज़ा नहीं है, 8 बज गए हैं, अब कब होटल जाएंगे, लगेज लेंगे, चेकआउट करेंगे, फिर स्टेशन पहुंचेंगे, गाड़ी तो आज मिलने से रही। आई सेड बाबा जी इतना संभाल लिया आपने, आगे भी संभाल लो। एंड देन मेरी बच्ची ने, बड़ी वाली ने कहा कि अब आप जवाब ही मत दो, चुपचाप चलो हमारे साथ। तो मैं चुप्पी साध के उनके साथ चली। फिर हम लोग होटल गए, सब जो भी होना था हो गया। हम ट्रेन में अंदर आखिरी, मेरे हस्बैंड ने सीढ़ी पे पैर रखा अंदर और ट्रेन चल पड़ी। तो ऐसा होता है, यू नो, इफ यू हैव फेथ इन हिम, ही हिमसेल्फ विल कम एंड हेल्प यू आउट। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास, दिस वॉज जस्ट वन ऑफ देम दैट केम टू माई माइंड। विश यू अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: पति बोला, जज साहब मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए। जज ने पूछा, पर क्यों? पति बोला, जज साहब जब से मेरी शादी हुई है, बीवी आई है, तब से वो कुछ भी बात नहीं कर रही है। जज बोला, एक बार फिर सोच लो, ऐसी बीवी बड़ी किस्मत वालों को मिलती है।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। आज की बात शुरू करते हैं एक और सवाल से। क्या हर वो आवाज जिसका डिक्शनरी में कोई मतलब ना मिले सच में बेमतलब होती है? जरा याद कीजिए, धीम ता धीम ता धीम, ताना दे रे ना दराना। सुनने में लगता है जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल पासवर्ड बोल रहा हो, और शायद आपने भी यही आवाज ऋषभ रिखीराम शर्मा के वायरल ट्रैक चाणक्य में सुनी हो। शुरू में सुनने वाले को लग सकता है कि वाह क्या रिदम है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इन सिलेबल्स को एक नजरिए से देखें तो इनके पीछे एक पूरी आध्यात्मिक कहानी बताई जाती है। तो आज चलिए खोलते हैं उन तरानों का राज। तराना हिंदुस्तानी संगीत की एक ऐसी रचना है जहां एक आम कविता के शब्दों की जगह रिदमिक सिलेबल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे तरदीम ताना उड़ानी दारे नादिरदानी, सुनने में ये शब्द नहीं जैसे सुरों के टुकड़े लगते हैं, और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर इनका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ताल और लय के लिए हैं, या इनके पीछे भी कोई कहानी है? और यहां पहुंचते हैं हम दो अमीरों की कहानी पर। पहला नाम है अमीर खुसरो साहब का, 13वीं सदी के मशहूर कवि, संगीतकार और कलाकार। तराना की उत्पत्ति को लेकर एक मशहूर रिवायत अमीर खुसरो से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू पंडितों को संस्कृत में कठिन रचनाएं गाते हुए कभी सुना। उन्हें भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन संगीत की लय और सुर उन्हें बहुत पसंद आए। रिवायत के मुताबिक इसी से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी रिदमिक सिलेबल्स का प्रयोग किया। मतलब भाषा समझ न आए लेकिन सुर सीधा कान तक पहुंच जाए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। कभी कभी हम किसी भाषा का एक भी शब्द नहीं समझते, लेकिन गाना खत्म होने के बाद भी उसकी धुन हमारे दिमाग में घूमती रहती है। यानी सुर को डिक्शनरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहां कहानी में एक और इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। दूसरे अमीर थे उस्ताद अमीर खान। उन्होंने सिलेबल्स को एक दूसरे ही नजरिए से देखा। उनका मानना था कि ये आवाजें सिर्फ बेमतलब साउंड्स नहीं हैं। उनके अनुसार इनमें पर्शियन अरेबिक अल्फाज और सूफी अर्थ छुपे हुए हैं। और फिर शुरू होता है तराना का डिकोडिंग गेम। जैसे डर का अर्थ बताया गया अंदर, दरा का अंदर आओ, तन का शरीर, तनंदरा को एक वाक्य में पढ़ा गया और उसका मतलब बताया गया कि मेरे तन के अंदर आओ। और यहां तराना सिर्फ ताल नहीं रहता।

है तन के अंदर आओ और मुझे अपना बना लो। अब वही आवाज दोबारा सुनिएगा, पहले क्या लग रहा था कि बस एक रिदम है और अब एक पूरा अर्थ। यही तो तराना की खूबसूरती है। पहले कान सुनता है, फिर दिमाग सवाल करता है और फिर अर्थ का एक नया दरवाजा खुलता है। एआर रहमान की फिल्म थक्षक का मशहूर पीस इसी तराने के अंदाज में है। उसमें आप सुन सकते हैं कि धीम ता धारे धानी धीम, धीम को डिवाइन गिवर से, ता धारे को नॉलेज से और धानी को जानने वाले से जोड़ा जाता है। फिर आता है ताना दे रे ना, जिसकी व्याख्या की जाती है मेरे तन और मेरे अंदर आओ, और पूरा भाव कुछ इस तरह बनता है। हे वो जो ज्ञान देने वाला है, मेरे अंदर आओ, आओ मेरे अंदर समाओ, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ क्योंकि तुम सब जानते हो। अब सोचिए एक कॉम्पोजिशन जिसे हम सिर्फ धीम ताना समझकर सुन रहे थे आज तक, उसके अंदर किसी ने पूरी प्रार्थना पढ़ दी। और दोस्तों यही आज की बातें इधर की उधर की का सबसे मजेदार सवाल है, क्या म्यूजिक को समझने के लिए उसका हर शब्द समझना जरूरी है? आप किसी ऐसे गाने के बारे में सोचिए जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी धुन सुनते ही आपके हाथ ताल देने लगते हैं, पैर थिरकने लगते हैं। क्यों? शायद क्योंकि म्यूजिक की एक अपनी ही भाषा है और तराना हमें एक और पॉसिबिलिटी दिखाता है। कभी आवाज पहले आती है और अर्थ सालों बाद आता है, और कभी अर्थ सुनने के बाद आवाज पहले से बिल्कुल अलग लगती है। तो अगली बार जब आप सुने धीम ताना दे रे ना, तो तुरंत ये मत कहिए अरे ये तो बस कुछ साउंड्स हैं, थोड़ा रुकिए, सुनिए, ताल पकड़िए और फिर पूछिए इसके पीछे कोई कहानी भी है क्या। तराना हमें शायद यही सिखाना चाहता है, हर आवाज को शब्द की जरूरत नहीं और हर शब्द का अर्थ सिर्फ डिक्शनरी में नहीं मिलता। हमारे SN रेडियो के सभी सिंगर्स के लिए और म्यूजिक लवर्स के लिए आज की ये तराना भरी स्टोरी। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। आज समझ आया ना तराना क्या होता है? तो और ध्यान से सुनेगा मुझे अगली बार। आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तातिया भील 90.8 FM पर। आज की बात यहीं रुकते हैं, लेकिन अगली बार जब कोई कहे ये तो बस बेमतलब के बोल हैं, तो जरा मुस्कुरा कर पूछेगा पक्का? क्योंकि हो सकता है बोल वही हो, बस उनका राज अभी खुलना बाकी है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, जीवन के उस दौर से गुजर रहा हूँ, पुराने गाने सुनूं तो बीवी कहती है किसकी याद में मरे जा रहे हो, और अगर नए गाने सुनूं तो कहती बड़ी जवानी छा रही है।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो, आपरी बातें।
2: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ, कुछ प्रेरणादायक बातें। नकारात्मकता। दोस्तों, याद रखें कि जिंदगी हमेशा उस तरह नहीं चलती जिस तरह से हम चाहते हैं। ऐसे में चीजों को लेकर शिकायत करने के बजाय हमेशा चीजों के प्रति पॉजिटिव रवैया ही रखें। सफल लोगों को जब भी कभी जिंदगी में नेगेटिविटी घेरती है, तब वो उससे अपनी पॉजिटिव सोच के जरिए बाहर निकल आते हैं। आपको भी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा शिकायत करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढें, उनसे निपटें और बस आगे बढ़ें। निगेटिविटी से लड़कर ही आप सफल हो सकते हैं। बने रहिए आरजे समीर के साथ। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगें, तो दोस्तों समझ लेना, जीना आ गया है।

0: सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है।
1: मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से।

माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर

पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको

0: कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
1: है समय प्रतिकूल माना, पर समय अनुकूल भी है। शाख पर एक फूल भी है, घन तिमिर में एक दिए की टिमटिमाहट भी बहुत है, एक सूने द्वार पर बेजान आहट भी बहुत है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोनू ने पूछा, किस बात से परेशान हो? मोनू ने कहा, यार घर वालों से बहुत परेशान हूँ। सोनू ने कहा, अब घर वालों ने क्या कर दिया? मोनू ने कहा, जिस दिन सोचता हूँ कि कुछ नया करूंगा, उसी दिन गेहूं पिसवाने भेज देते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दुख लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, जो पहले पानी की भाषा में आदमी की आंखों से आता है और फिर हाथों की धरोहर बन जाता है।

जो कुछ पुराना है मोहक तो लगता है, टूटने का दर्द मगर सहना ही पड़ता है। बहुत कुछ टूटता है तब नया बनता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं, नई ड्रेस पहनकर तुम्हारी बारात में जा रहा हूँ।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ऑपरेशन के बाद मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब मैं बिल्कुल रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, अरे बेटा डॉक्टर

0: पुत्र साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ।
1: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

0: तो दोस्तों रेडियो टंटिया भीम 90.8 FM पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: नमस्कार साथियों।
4: मेरा भी नमस्कार।
3: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
4: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
3: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
4: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
3: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
4: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
3: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
4: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
3: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
5: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
3: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरे ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
4: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
3: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
4: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
3: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली
4: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
3: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
4: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
3: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
4: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
6: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
4: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
3: साहब ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
4: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
3: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
4: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
3: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
4: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
3: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
4: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
3: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
4: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
3: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
4: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
3: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
4: सिंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
3: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
4: तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ काली बाई।
3: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
4: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
3: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
4: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
3: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
4: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
3: कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम।
7: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
8: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
9: ये कहानी है प्राचीन यूनान की, लेकिन आइए कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यूनान की। आपको बता दें कि यूनान दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। अंग्रेजी में इसे ग्रीस भी कहते हैं।
10: ये देश भूमध्य सागर में स्थित बहुत से द्वीपों का समूह है। यहाँ के निवासियों को यवन या यूनानी कहते हैं। यहाँ की राजभाषा यूनानी है, अंग्रेजी में इसे ग्रीक कहेंगे। ग्रीक भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है और यूरोप की लगभग सभी भाषाओं को इसने बहुत से शब्द दिए हैं। यहाँ की मुद्रा या करेंसी है यूरो। तो साथियों, लगभग सभी राष्ट्रों का कोई ना कोई राष्ट्र वाक्य होता है, जैसे हमारे देश का राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते। वैसे ही यूनान का राष्ट्र वाक्य है एलेफ्थेरिया थानाटोस, जिसका अर्थ है या तो स्वतंत्रता या मृत्यु, अन्य कोई विकल्प स्वीकार नहीं है।
9: यूनान की राजधानी है एथेंस, जहां से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। उन दिनों आज की तरह ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक नहीं हुआ करते थे।
10: प्राचीन ओलंपिक खेलों में उन दिनों प्रथम आने वाले विजेता को जैतून की पत्तियों का मुकुट, द्वितीय आने वाले को जैतून के फलों की माला और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को जैतून के पत्तों की माला पहनाई जाती थी। तो साथियों, आइए अब सुनते हैं प्राचीन यूनान की ही एक बहुत ही प्यारी और प्रेरक कहानी। कहानी है प्राचीन यूनान के एक बहुत अच्छे चित्रकार की। उसके बनाए गए चित्रों की हर जगह बड़ी धूम थी।
9: एक बार की बात है, उसने एक नर्तकी का आदमकद चित्र बनाया। वो बेहद खूबसूरत चित्र था। जब इस चित्र की प्रदर्शनी की गई तो समाजी की तहलका मच गया। यूनान में हर जगह उस चित्र की चर्चा होने
11: लगी।

0: हुआ
1: पाने मोर्फी।
0: पाने मोर्फी। भीड़ की भीड़ उस चित्र को देखने के लिए आने लगी। ये इतना सुंदर और जीवंत चित्र था कि लगता था कि नर्तकी बस अभी बोल पड़ेगी।
2: नर्तकी का पूरा सौंदर्य इस पेंटिंग में मानो सजीव हो गया था। इस पेंटिंग की चर्चा उस देश के राजा के कानों में पड़ी। राजा भी ये प्रदर्शनी देखने आया और इस चित्र को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्रकार को बहुत से उपहार दिए।
0: इतना ही नहीं, राजा ने उस चित्रकार को शाही चित्रकार घोषित कर दिया। इस चित्र ने उस चित्रकार को रातों रात बहुत लोकप्रिय बना दिया। वो स्टार बन गया। इस चित्र की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई। अब वो बेनाम चित्रकार बहुत प्रसिद्ध हो गया था।
2: जहां भी वो जाता, लोग सम्मान से खड़े हो जाते, उसका अभिनंदन करते और उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते थे।
0: कहते हैं कि सफलता का भूत कई बार सिर चढ़कर बोलता है। व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा हो जाता है और वो अपने अलावा, अपने कौशल के अलावा कुछ और नहीं सोचता।
2: यही उस चित्रकार के साथ भी हुआ। अपनी कला से वो इतना प्रभावित हुआ कि अब वो दिन भर उस चित्र के सामने बैठा रहता था और उसे ही निहारता रहता था। वो बेसुध सा हो गया था। वो सबको यही बताता कि देखो, मैंने कितना महान काम किया है और मेरी बराबरी का और कोई कलाकार है ही नहीं।
1: क्या बात है, वाह वाह रे मेरी कला, क्या सुंदर चित्र बनाया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा चित्र कोई और कभी बना सकता है। शायद ऐसा चित्र कभी किसी ने नहीं बनाया है। वाह, कितनी महान कला है मेरे अंदर।
0: जी हाँ साथियों, इस मनोदशा में इंसान अपने आप से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे अपने सिवाय कुछ नहीं सोचता। अब तो ये होने लगा कि वो उस चित्र से उठते बैठते बात करता था। उसकी दीवानगी इतनी हद तक बढ़ गई कि वो अक्सर रातों को भी उठ जाता था और उस चित्र से बातें करने लगता था।
1: हाँ, आइए आइए, देखने आइए। क्यों नहीं, देखिए देखिए, है ना कमाल का चित्र।
3: बिल्कुल,
1: कितना सुंदर चित्र है ये। मैं जब जब इसे देखता हूं मुझे ऐसा लगता है ये और सुंदर होता जा रहा है। वाह, अथा सुंदर।
0: और सुबह जो भी उसे मिलता सबको यही बताता कि देखो, मैंने कैसा महान कार्य कर दिखाया।
2: लोगों को शुरू में ये बात अजीब नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये तो असामान्य बात है। महीने बीत गए, अब उस चित्रकार ने दूसरी पेंटिंग्स बनाना भी छोड़ दिया था। वो बस अपने उसी चित्र को देखता रहता था।
0: एक दिन की बात है, वो सवेरे उठा और हर रोज की तरह अपनी उसी पेंटिंग को देखने चल दिया। उसे बहुत गहरा झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर किसी ने ढेर सारा रंग उड़ेल दिया है और किसी तेज चाकू से उस पेंटिंग को जहां तहां से काट दिया है। ये देखकर उस चित्रकार को मानो पागलपन का दौरा पड़ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
3: ये क्या हो गया, किसने किया है ये काम, किसने किया ये?
0: वो पूरे म्यूजियम में शोर मचाने लगा।
3: किसने किया, किसने किया ये?
0: सब सहम गए थे। अचानक पीछे से गंभीर आवाज आई।
4: मैंने किया है।
0: वो चित्रकार पीछे मुड़ा तो चौंक गया। पीछे उसके गुरुजी खड़े थे।
2: गुरुजी, आप?
1: क्या ये आपने किया है?
4: हाँ, मैंने किया है ये काम।
1: लेकिन क्यों?
4: इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तुम अपनी कला से संतुष्ट हो गए हो।
1: लेकिन गुरुजी, वो मेरी सर्वोत्तम रचना थी, इससे अच्छा तो कुछ बन ही नहीं सकता।
4: नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया जिसे संपूर्ण कहा जा सके।
1: गुरुजी,
4: अब तुमने अभ्यास करना, कुछ नया बनाना सब छोड़ दिया है। अब तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने बनाया उससे अच्छा कुछ बन ही नहीं सकता। ये बात गलत है।
1: लेकिन गुरुजी, मैं जानता हूं कि अब मैं इस पेंटिंग से बेहतर कुछ बना ही नहीं सकता।
4: तुम्हारी यही सोच गलत है। तुम प्रसिद्ध तो हो गए हो, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुए। उठो, पेंट ब्रश लेकर अब फिर से शुरू हो जाओ। कुछ नया और बनाओ जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं।
0: दोस्तों, उस चित्रकार को बहुत पश्चाताप हुआ, और फिर जब उसने दोबारा पेंट ब्रश उठाया तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक से एक ऐसी बहुमूल्य पेंटिंग्स बनाई जो आज यूनानी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। साथियों, सीखने का कोई अंत नहीं है।
2: जी हाँ, सीखते रहिए, प्रश्न करते रहिए, अवलोकन करते रहिए।
0: इस बात से संतुष्ट मत हो जाइए कि प्रकृति में या आसपास कुछ होता है। आप तब तक संतुष्ट न होइए जब तक ये न जान लें कि ऐसा क्यों होता है।
2: यदि आपने कोई काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, किसी विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, संगीत के अभ्यास से बहुत निपुणता प्राप्त कर ली है, तो अब इतने में ही संतुष्ट ना हो जाइए कि अब और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है।
0: सीखते रहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग।
2: यानी सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती।
4: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
6: साथ है तो संभव है।
7: ये बात बहुत पुरानी है। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उन सब में गहरी मित्रता थी। वे सभी बड़े मेल प्रेम से रहते थे। जंगल में बड़े बड़े तालाब थे जहां बहुत से जल जंतु भी रहा करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा घना पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थीं जिस पर बहुत से जंगली हंस बसेरा करते थे। वे हंस सुबह दाना पानी लेने के लिए उड़ जाते और शाम को उसी पेड़ पर वापस आ जाते। पेड़ के पास ही एक झील थी। उसके शीतल जल में वे खूब नहाते और किलोल करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
6: एक दिन की बात है, जब पक्षी शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा पौधा उगाया है। उस पौधे में एक छोटी सी कोमल लता थी जो पेड़ के तने से चिपकी हुई थी। उसे जब हंसों ने देखा तो आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक हंस, जो आयु में दूसरे हंसों से बड़ा था और बुद्धिमान भी, उसने कहा,
8: क्या तुम उस छोटे पौधे को देख रहे हो जिससे लता निकल रही है?
9: हाँ, देख तो रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सी नई बात है? ऐसे तो बहुत से पौधे निकलते रहते हैं।
10: ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
11: हाँ, बेकार ही ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं।
8: लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
9: अरे छोड़िए भी, हमारे पास बातें करने के लिए क्या अब यही बचा है?
11: हाँ, और कोई बात हो तो कहिए, वरना चुप रहिए।
10: मानते हैं कि आप हम सबसे बड़े हैं,
9: लेकिन हम भी कोई कम समझदार नहीं हैं।
11: हाँ।
7: सभी हंसों ने उस बुद्धिमान हंस की बात काट दी और उसका मजाक भी उड़ाया। खैर, दिन बीतते गए। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा और उसकी लता पेड़ के तने का सहारा लेकर बड़ी होने लगी। अब वो लता इतनी बड़ी हो गई कि वो लगभग पेड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच गई।
6: उस पेड़ पर बसेरा करने वाले जंगली हंसों का झुंड रोज सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता और शाम को हमेशा की तरह वापस आ जाता था। उन्हें वो पेड़ बहुत सुरक्षित लगता था क्योंकि वो ऊंचा था और उसका तना इतना चिकना और सीधा था कि कोई भी इस पेड़ पर आसानी से चढ़ नहीं सकता था। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है, शाम को जब सारे हंस वापस आ गए तो बुद्धिमान हंस ने सबको बुलाया और कहा,
8: साथियों, आज मैंने एक बार फिर से उसी विषय पर बात करने के लिए आप सबको बुलाया है।
11: उसी विषय पर? अरे किस विषय पर?
8: उसी पौधे के बारे में जिस पर हमने एक दिन चर्चा की थी, लेकिन आप सब ने उसे टाल दिया था।
9: उफ हो, फिर वही बात। अरे ऐसा तो सारे जंगल में होता रहता है।
11: हाँ, पौधे उगते हैं, बड़े हो जाते हैं। आपको क्यों बेकार की चिंता हो रही है?
8: साथियों, मेरी चिंता व्यर्थ नहीं है।
11: ओहो,
8: ध्यान से देखो।
11: अरे देख तो रहे हैं।
8: वो लता पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़कर वो इतनी ऊंची हो गई है कि हमारे पेड़ की डालियों तक पहुंच गई है।
7: बात आई गई हो गई, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। वो लता धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और अब उसने एक मोटी रस्सी का रूप धारण कर लिया था। वो लता अब लगभग पेड़ की सभी शाखाओं तक पहुंच गई थी।
6: और वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकल गए, एक बहेलिया वहां आया। उसने चुपके से कई बार देखा था कि उस पेड़ पर बहुत से जंगली हंस रहते हैं।
12: ये जगह ठीक है, यहाँ जाल बिछाता हूँ, यहाँ बहुत सारे पंछी फंस जाएंगे।
6: बहेलिया उस मजबूत लता की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और अपना जाल बिछा दिया।
7: जाल बिछाकर वो चला गया। उसे पता था कि पक्षी अब शाम को ही आएंगे। शाम को पक्षी वापस आए। बहेलिये के बिछाए जाल पर उनकी नजर नहीं गई और जैसे ही वो डालियों पर बैठे, वे सब के सब उस जाल में फंस गए।
10: अरे कोई है, हमारी सहायता करो।
13: अरे हमें छुड़ाओ भाई, हमारी सहायता करो भाई।
8: अरे ये क्या हो गया?
13: फंस गए भाई,
9: हम सब जाल में फंस गए।
8: अरे ये कैसे हुआ? तुम लोग भी मेरी बात नहीं मानते हो ना? मैंने कहा था
13: ऐसे फंस गए हम।
8: अरे क्या हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम लोग सुनते कहाँ हो?
6: वे सभी चिल्लाते रहे, पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार। संघर्ष करते करते वो थक गए। उन्होंने बुद्धिमान हंस से कहा,
13: हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी।
9: काश हमने आपकी बात मानी होती तो आज का दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता।
13: अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कोई उपाय बताइए।
8: शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने बहुत पहले ही तुम सबको चेतावनी दी थी, लेकिन तुम सब ने नहीं सुना। संकट के समय अब हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ध्यान से सुनो। कल सुबह जब वो बहेलिया आएगा तो हम सबको ऐसा अभिनय करना होगा मानो कि हम मर चुके हैं।
13: भला इससे क्या होगा?
8: कोई भी बहेलिया मरा हुआ पक्षी नहीं चाहेगा। वो एक एक करके हमें जाल से निकालकर भूमि पर फेंक देगा।
9: हाँ?
8: जैसे ही वो आखिरी पक्षी को नीचे फेंकेगा और पेड़ से नीचे उतरेगा।
9: हाँ?
8: इसी बीच हम सब एक साथ उड़ जाएंगे।
11: हाँ, ये ठीक है,
10: उड़ जाएंगे हम सब।
7: और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह बहेलिया वहाँ आया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि बहुत से पक्षी उसके जाल में फंस गए हैं, उसे बड़ा लाभ होने वाला है। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा और जाल के पास जा पहुँचा। लेकिन ये क्या,
6: बहुत से पक्षी फंसे हुए थे लेकिन वो निश्चल पड़े हुए थे। उनकी गर्दनें ढलकी पड़ी थी और कोई हरकत नहीं थी। उसने जाल को हिलाया भी लेकिन किसी पक्षी ने कोई हरकत नहीं की। बहेलिया बड़बड़ाने लगा,
14: अरे ये क्या, ये सब तो मरे पड़े हैं। हो सकता है इन्होंने कोई विषैला बीज खा लिया, पर अब तो कोई लाभ नहीं। अब क्या करूं, इन्हें नीचे फेंक देता हूं, फिर जाल लेकर उतरना भी आसान हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही करता हूं।
7: तो इस तरह बहेलिये ने एक एक करके पक्षियों को जाल से निकालना शुरू किया और वो उन्हें नीचे जमीन पर फेंकता चला गया। अब अंतिम पक्षी भी भूमि पर फेंका जा चुका था।
6: जैसे ही आखिरी पक्षी जमीन पर गिरा, योजना के अनुसार सभी उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। बहेलिया हाथ मलता हुआ आश्चर्यचकित और ठगा सा उन्हें देखता रह गया।
7: साथियों, प्रसिद्ध मोटर व्यवसायी हेनरी फोर्ड ने कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल। इसका भाव ये है, संगठित होकर हम सशक्त बनते हैं और विभाजित रहकर निर्बल। यानी
15: साथ है तो संभव है।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
16: वो आखिरी पत्ता।
6: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
7: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
6: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
7: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगीं और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
8: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
17: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
8: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
6: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया।

0: और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ
2: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्से, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: ओ जॉन से,
1: साथियों सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
0: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
0: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
5: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
0: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
4: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
5: जॉन्सी अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
0: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
4: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
4: सू मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
4: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल सरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू? हाँ जॉन्सी,
4: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
4: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
4: हाँ, हाँ इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
4: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ,
4: हाँ,
3: मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
4: देखो अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
4: हाँ, हाँ।
0: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
2: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
4: बेहतर।
3: ये लो कॉफी पियो।
4: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
4: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
4: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
3: हाँ।
4: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
4: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
4: ओ गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
4: क्या?
3: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
4: क्यों नहीं गिरा?
3: हाँ,
4: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
1: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
3: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
4: ओह,
3: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
4: पेंटिंग?
3: हाँ।
4: कैसी पेंटिंग?
3: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
4: ओह, तो वो पेंटिंग है?
3: हाँ।
4: असली पत्ता नहीं है?
3: नहीं।
4: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
3: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
4: हाँ सू, मास्टरपीस, वो कहा

0: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
1: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।

0: सुबह है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
3: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की बड़ी बड़ी कहानियों की शुरुआत किसी बड़े प्लान से नहीं होती, किसी एक्सेल शीट से नहीं होती, किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं होती, बल्कि होती है वो शुरुआत एक छोटी सी कोशिश से। आज की हमारी मेहमान की कहानी एक ऐसे ही मिकी माउस केक से शुरू हुई जो एक माँ ने कोविड के दौरान अपने 2 साल के बच्चे के बर्थडे पर बनाया। कोमल जी मालपुरा टोंक से हैं। माँ से कुकिंग का प्यार सीखा, शादी और फैमिली को पूरे दिल से जिया, और फिर एक छोटे से होममेड केक ने उनके अंदर कुछ नया सीखने और बेहतर करने की चाहत को बहुत आगे बढ़ा दिया। बर्न्ड केक्स, बिगड़ी हुई क्रीम और कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद लगभग 5 साल पहले शुरू हुआ कुक स्मार्ट बाय कोमल का सफर। आज केक्स के साथ कुकीज, क्रैकर्स, बिस्किट्स, ड्राई केक्स और रागी कुकीज जैसे हेल्दियर ऑप्शंस भी उनके सफर का हिस्सा हैं। और उनके लिए बेकिंग सिर्फ टेस्ट नहीं है, क्वालिटी है, फ्रेशनेस है और बहुत सारी केयर है। इसलिए वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर मिलने के बाद फ्रेश बनाती हैं और प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं करती। इस पूरे सफर में उनके हस्बैंड और मदर इन लॉ का सपोर्ट उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहा, और अब उनका सपना है अपना एक खुद का बेकिंग स्टूडियो बनाना, जहां वो क्रिएट करें, एक्सपेरिमेंट भी करें और दूसरों को बेकिंग भी सिखाएं। तो आज बात होगी एक माँ की क्रिएटिविटी की, एक होम मेकर के सपने की, फैमिली सपोर्ट की और उस हौसले की जो कहता है परफेक्ट शुरुआत जरूरी नहीं, बस शुरुआत जरूरी है। तो कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड के एक और नए सेगमेंट में। कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज SN रेडियो से कनेक्ट होकर?
2: हेलो मैम, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली मुझे आपसे बात करने का मौका मिला।
1: मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैम, और गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, आज हम इतने अच्छे दिन पे कनेक्ट हुए हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है ना?
2: बिल्कुल मैम, गणपति बप्पा मोरिया।
1: चलिए आरंभ करते हैं। मैम, आप मुझे सबसे पहले बताएं कि आपकी जो जर्नी की शुरुआत हुई वो बहुत ही क्यूट हुई, एक मिकी माउस केक से शुरुआत हुई आपकी, आपके बेकिंग की जर्नी की, और उस केक से आप खुद सैटिस्फाइड नहीं थे, तो अब आपको जब आप पीछे मुड़के देखते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि वो जो डिससैटिस्फैक्शन था, वो जो एक फीलिंग थी कि अरे यार अच्छा नहीं बना, उसी फीलिंग की वजह से आज आप अंदर से उस बेकर को इतनी आगे तक लेके जा पाई हैं, इतने परफेक्शन से उस काम को कर पाई हैं? क्या वो एक टर्निंग पॉइंट था, वो क्यूट सा मिकी माउस का केक?
2: जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो एक कहते हैं ना कि किक मिलती है आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैंने अपने बेबी के बर्थडे पे मिकी माउस का केक बनाया था, बट उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि एक परफेक्शन जो होती है क्रीम को लेके, परफेक्शन होती है शार्पनेस को लेकर के, वो उस केक में नहीं थी। तो बस उसी को लेके मेरे अंदर जो एक स्पार्क था कि ठीक है मुझे आगे जाके इसको और परफेक्ट करना है, मैं इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जो अपना डिससेटिस्फेक्शन था मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हो सकती हूँ। देन मैंने अपने जो बेकर का जो पेशेंट था मैंने उससे आगे जाए आगे बढ़ाया, और वही एक छोटा सा मोमेंट था कि ठीक है मुझे इस केक को आगे लेके जाना है, इस अपनी जर्नी को आगे लेके जाना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इसी से शुरुआत हुई कुक स्मार्ट बाय कोमल की, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि ये शुरुआत हुई, क्योंकि मैंने बहुत रिसेंटली एक इवेंट पे आपके केक को टेस्ट किया है और वो यमी होते हैं, परफेक्ट होते हैं, और जो आप प्रिसिजन चाहती हैं शायद आपको, मुझे नहीं पता वो प्रिसिजन मिला या नहीं मिला, हमें तो बहुत प्रिसिजन मिल गया, हमें उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा और उसकी लुक बहुत अच्छी लगी। तो आई एम श्योर आप बहुत बहुत आगे आ गए हैं उस एक मिकी माउस केक के साथ। तो मैम मुझे बताइए कि जब आपने बर्न्ट केक्स को देखा, फेल्ड क्रीम्स को देखा जो परफेक्ट नहीं बन रही थी, बहुत सारी मिस्टेक्स का सामना किया, तो क्या आपको लगता है कि जो किचन ने आपको जिंदगी में ये जो इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया कि बार बार आप फेल होते हो, आपकी रेसिपी फेल होती है फिर भी आप ट्राई करते रहो, इससे आपने जिंदगी में क्या लेसन सीखा? क्या जिंदगी भी ऐसी होती है बर्न्ट केक्स और गलत क्रीम्स की तरह?
2: बिल्कुल मैम, लाइफ भी कुछ ऐसी होती है, अपने हर चीज के अंदर अपने को थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, फिर एक बार स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट करना होता है कि हाँ ठीक है, लाइफ का जो लेसन है वो ये कि फेलियर के सिर्फ फेलियर मतलब नहीं होता है, उसका एंड नहीं होता है, इट मीन्स यू हैव टू रीस्टार्ट दैट। कभी कभी मैं जब भी बनाती थी, कई बार होता था कि केक बर्न हो जाता था, क्रीम नहीं बनती थी, कई बार होता था कि वो इतना राइज नहीं करता था, या कई बार होता था कि टेस्ट अच्छा नहीं आता था। तो किचन में कई बार ऐसा होता है कि रेसिपी फेल हो जाती है, कई बार इंग्रेडिएंट्स इतने ऊपर नीचे हो जाते हैं कि केक खराब हो जाता है, तो उससे मुझे कई बार गलत फील होता था, गिल्टी फील होता था मुझे कि यार नहीं ये मैंने गलत किया, मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करूंगी, मैं दोबारा से इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मेजर करके फिर से इसे बनाऊंगी, तो आई एम श्योर कि ये बनेगा। और उसी का ही रिजल्ट है कि आज मैं अपने जो कुक स्मार्ट बाय कोमल का जो ब्रांड है मैं उसे इतना आगे लेके आ सकी हूँ।
1: क्या बात है मैम, क्या बात है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने कुक स्मार्ट बाय कोमल की शुरुआत की, इतनी हम्बल शुरुआत से आप उसको इतना आगे लेके जा सकी, और इतनी खूबसूरती से आपने इन दोनों चीजों को पैरेलली ड्रॉ किया कि रेसिपी और लाइफ बिल्कुल सेम होते हैं, रेसिपी में जैसे किचन में गलती होती है वैसे ही जीवन में कई बार गलत रेसिपीज हो जाती हैं, गलत इंग्रेडिएंट्स डल जाते हैं और आप फेल हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं रुक जाएं, आगे बढ़ें। तो इसी आगे बढ़ने के जज्बे के साथ मैं आज आपका पहला फरमाइशी गीत प्ले करना चाहूंगी हमारी पूरी एसएन रेडियो फैमिली के लिए। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, बहुत ही खूबसूरत फिल्म से गीत है, आशाएं, फिल्म इकबाल।

0: वेलकम बैक कोमल जी, और बहुत बहुत थैंक यू इतने खूबसूरत गीत की फरमाइश करने के लिए। आगे चलते हैं। आपने बताया कि आपका जो कुकिंग से प्यार है वो आपको आपकी माँ से मिला। आई एम श्योर हम सब लोग अपनी माँ को ही लुकअप करते हैं व्हेन इट कम्स टू कुकिंग एंड किचन। तो आज जब आप बेक करती हैं तो क्या आपको लगता है कि आपकी सब रेसिपीज, आपके सब केक्स में कहीं ना कहीं उनकी कोई याद, उनका कोई अंदाज होता है?
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी जो ये बेकरी का जो पेशन है, ये आप इसे कह सकते हैं कि जो कुकिंग का जो प्यार है मुझे ये अपनी माँ से मिला है। बचपन से ही मैंने उन्हें किचन में नई नई चीजें बनाते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हाँ, आज भी अगर मैं कुछ रेसिपी ट्राई करती हूँ तो उनकी मुझे याद आती है कि हाँ, मम्मा होती तो ये इसको ऐसे बनाती, हम इसे ऐसे बनाते। तो आज जब भी होता है
0: होता
1: तो मुझे उनकी याद जरूर आती है। मैं कुछ भी बनाती हूँ, शायद उनका यही जो डायरेक्टली अंदाज है वो मैं रेसिपी में ना दिखा पाऊँ कहीं ना कहीं, लेकिन उनका जो कुकिंग का जो ये क्यूरियोसिटी है, जो पैशन है वो मेरे अंदर है, उससे मैं उसे बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि इसका इसमें बहुत बड़ा रोल है। और सिर्फ यही नहीं होता है, मुझे लगता है कि माँ से हमें सिर्फ रेसिपी नहीं मिलती है, उनसे कुकिंग को प्यार करना भी सीखते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपकी मम्मा भी केक बेक करती थी?
1: जी नहीं मैम, मम्मा केक बेक नहीं करती हैं। वो सिर्फ जो अपनी नॉर्मल स्वीट्स एंड ऑल होती है, जस्ट लाइक घेवर, नमकीन एंड ऑल, वो ही इन चीजों को बनाती थी।
0: क्या बात है, क्या बात है मैम। तो वही होता है कि मदर्स को देख के हम सीखते हैं। क्या आपके, अगर मैं अगर आपसे पूछूं, थोड़ा ऑफ द कफ एक सवाल पूछूं, कि आप जब आज इतनी सारी केक्स बेक कर चुकी हैं, इतना एक्सपीरियंस गैदर कर चुकी हैं, एक एस बेकर बन चुकी हैं, तो आपके लिए आपका फेवरेट केक, जो आपको लगता है ये तो मेरा एक सिग्नेचर केक है मेरी शॉप का, कुक स्मार्ट बाय कोमल का, वो कौन सा है, उसमें क्या क्या डलता है, उसकी रेसिपी क्या होती है, थोड़ा सा बताएं।
1: जी मैम, मेरा इस 2026 में अपन मंथ कहते हैं, तो मेरा सबसे जो हॉट सेलर केक है वो है आटा जैगरी केक, जो कि बहुत हेल्दी है, शुगर फ्री है। जी, यही केक मैं उस दिन इवेंट में भी लेकर आई थी जो आपने टेस्ट किया था। इसके अंदर आटा है, कर्ड है, लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स है, इवन सीड्स है, सब कुछ मिक्स है, और साथ के साथ हमारा उसमें प्यार मिक्स है।
0: सबसे ज्यादा तो यस यस यस, बहुत ही टेस्टी केक था वो, और मैं सभी को सजेस्ट करूंगी कि ये आटा जागरी केक जरूर ट्राई करें कुक स्मार्ट बाय कोमल का। इट इज एक्चुअली वेरी यमी, और इसमें सच में बहुत सारा प्यार है। इसी प्यार और साथ से मैं आपसे अपना नेक्स्ट सवाल पूछूंगी कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने, आपकी मदर इन लॉ ने, आपके बच्चों ने, सब ने मिलकर आपके इस बिजनेस को, आपके आइडिया को, आपके हुनर को विंग्स दिए, उन्हें उड़ान दी। तो आपके लिए ये जो एक्सपीरियंस है फैमिली सपोर्ट का, इसका सबसे खूबसूरत मतलब क्या है, आपके लिए क्या मायने रखता है ये?
1: बिल्कुल मैम, मेरे लिए जो फैमिली सपोर्ट का मतलब है वो सिर्फ एनकरेजमेंट नहीं है, बल्कि इसका

0: जो भरोसा करना और आपके लिए जो सपने बनाना है वो मैटर करता है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है मेरे हस्बैंड का, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया है और मुझ पर बिलीव भी किया, और साथ के साथ इसमें और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम अपन कह सकते हैं कि मेरे पीछे जो बैकबोन है मेरी, वो मेरी मदर इन लॉ है, क्योंकि वो है जो एक घर को भी संभालती है, इवन मेरे जो दो दो किड्स हैं उन्हें भी वो अच्छे से संभालती है कि मैं अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकूं। साथ के साथ मैं पूरा उसको मैनेज करके चलते हैं, उनकी हेल्प की वजह से ही मुझे अपना बैंकिंग और बिजनेस पे जो है फोकस करने को टाइम मिल जाता है। अगर मैं सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता तो घर और बच्चे बिजनेस को मैं बैलेंस करने में बिल्कुल डिफिकल्ट होता मुझे इसे मैनेज करने के लिए। इसलिए मेरी जर्नी में मेरी फैमिली उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी मेरी बेकिंग है।
1: क्या बात है मैम, सच में फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब मदर इन लॉ का साथ मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहना, फिर तो आपको कौन ही रोक सकता है। क्योंकि कई बार हम लोग मैरिड फीमेल्स के साथ देखते हैं यही एक्सपीरियंस होता है कि मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या इन लॉज जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो टच वुड, आप बहुत लकी हैं मैम। कोई ऐसा वाक्य आपके जहन में आ रहा है जो हमारे साथ साझा करना चाहें, कि कभी एक ऐसा मोमेंट आया जब आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपके बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच फंस गई और वहां पे आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, या कोई ऐसा इंस्टेंस जो आप साझा करना चाहें, कुछ भी अगर आपके जहन में है तो?
0: जी मैम बिल्कुल। अगर कल सुबह मेरा बेकिंग स्टूडियो का जो सपना है अगर वो खुल जाता है तो शायद मैं कुछ उसके अंदर उनका सपोर्ट है कि जो मेरी फैमिली है मेरे बच्चे हैं मैं उनको अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो ये आई एम श्योर होगा, और आपका बेकिंग स्टूडियो का सपना हम सब प्रे करते हैं मिलके, मेरी पूरी SN रेडियो की टीम और मैं, कि आपका ये सपना जरूर फुलफिल हो। क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत एंटरप्राइजिंग हैं, और एक विजन है आपके पास, और हुनर ऑफ कोर्स है आपके पास बेकिंग का। तो भगवान करे आपका स्टूडियो जल्दी खुले। इसी एहसास के साथ, इन्हीं सपनों के बीच हम सुनेंगे आपका अगला फरमाइशी गीत, जो भी बहुत सुंदर गाना है, बहुत फेमस आइकॉनिक सॉन्ग है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, फिल्म अंदाज।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत एक बार फिर से। आगे चलते हैं मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एक विजन है, आपका एक प्रैक्टिस है आपकी बेकिंग में कि आप जब भी कोई ऑर्डर आता है तो एकदम फ्रेश बनाते हैं और प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते, बिल्कुल फ्रेश आपका बेकिंग होता है, तो जब मार्केट में स्पीड और क्वांटिटी का बहुत प्रेशर हो तो क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये कितना चैलेंजिंग होता है ये डिसीजन?
1: बिल्कुल सही कहा मैम, आज के टाइम पे जो मार्केट रेट है, मार्केट में जो आइटम आ रहा है उतना उनको कम्पीट करना जो हम होम बेकर हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, स्पेशली जब आप स्मॉल बिजनेस कर रहे होते हैं और मार्केट में स्पीड और क्वांटिटी दोनों का प्रेशर होता है। लेकिन मैंने हमेशा ये बिलीव किया है कि मैं अपने कस्टमर को वही चीज दूं जो मैं खुद अपनी फैमिली को खुशी से सर्व कर सकती हूँ, कि ये बिना प्रिजर्वेटिव है, बिना किसी केमिकल है, तो मेरे प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो हमेशा फ्रेश बनते हैं। आफ्टर जो कस्टमर मुझे ऑर्डर देते हैं मैं उसके बाद ही उन्हें प्रिपेयर करती हूँ। कभी कभी होता है कि इसकी वजह से जो क्वांटिटी होती है, जो स्पीड होती है वो मेरी कम रहती है, कि आज मुझे से बिल्कुल केमिकल फ्री बनाना है, प्रिजर्वेटिव फ्री बनाना है, तो मैं क्वांटिटी का जो ऑर्डर है वो मैं कम लेती हूँ, उसकी स्पीड में स्लो कर देती हूँ, ताकि मैं उस क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करूँ। मेरे लिए कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो शॉर्ट टर्म नहीं, वो मेरे प्रॉफिट से ज्यादा वैल्यूबल है, कि मैं उसका जो ट्रस्ट है वो अपने लॉन्ग टर्म के लिए यूज करूँ, ताकि कस्टमर जो है मेरे पास घूम फिर करके वापस से मेरे पास आए कि नहीं मैम हमें कुक स्मार्ट बाय कोमल का ही प्रोडक्ट चाहिए, चाहे वो ड्राई केक हो या कुकीज हो। तो हम क्वालिटी के ऊपर ज्यादा प्रेशर देते हैं इवन क्वांटिटी से।
0: बिल्कुल मैम, बहुत ही खूबसूरत लाइन आपने अभी बोली कि मैं ऐसे केक्स बेक करना चाहती हूँ या ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहती हूँ जो मेरी फैमिली को मैं खिला सकूँ, जैसे मैं मेरी फैमिली को ही खिला रही हूँ। तो इससे आपका विजन समझ आता है, इससे आपकी क्लैरिटी समझ आती है, इससे आपके प्रोडक्ट की प्योरिटी और ब्रांड की प्योरिटी समझ आती है। और ब्रांड्स ऐसे ही बनते हैं मैम, वही होता है कि आज आप कॉम्प्रोमाइज कर लो तो शायद आप एक साल दो साल टिक जाओ, बट लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। तो ये जो विजन है आपका, ये बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म विजन है और सच में कुक स्मार्ट बाय कोमल एक ब्रांड के रूप में सामने आएगा बहुत ही जल्दी, आने वाले 10 साल में आई होप। और कस्टमर्स गॉड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रिंसिपल होता है जिसको आप बहुत बखूबी निभा रहे हैं, बहुत कंग्रेचुलेशन आपको। इसी से मैं आगे चलूंगी। जी जी, आपने केक्स के साथ साथ जैसे अभी आपने बताया कुकीज, क्रैकर्स, बिस्किट्स, ड्राई केक्स और रागी कुकीज, इन सबको एक्सपेरिमेंट किया, इन सब में अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड किया। तो ये जब आपने किया तो ये किस थॉट से किया, और ये जो नाम आपने रखा है कुक स्मार्ट बाय कोमल, इसका असली मतलब क्या है?
1: बिल्कुल, मेरे लिए सिर्फ एक ब्रांड नेम नहीं है, ये मेरी सोच है जो मैं अपने केक्स में, कुकीज में, सब में रिप्रेजेंट करती हूँ। मैंने केक से स्टार्ट किया था, फिर मैंने कुकीज बनाई, क्रैकर्स बनाए, और आज मेरे पास बिस्किट से लेकर के केक्स में काफी सारी वेराइटीज है जो ग्रेजुअली बहुत हेल्दियर ऑप्शन में भी आती हैं। जिस तरीके से अभी जो हमारी है सबसे ज्यादा जो सेल आउट हो रही है वो है रागी कुकीज जो हम जैगरी से बनाते हैं। तो कुक स्मार्ट का मतलब मेरे लिए सिर्फ स्मार्ट चॉइस के साथ कुकिंग करना, टेस्ट भी हो, क्वालिटी भी हो, और पॉसिबल हो तो बेटर इंग्रेडिएंट्स और बेटर ऑप्शन को एक्सप्लोर भी किया जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बना रहे हैं उसमें हमारी केयर भी होनी चाहिए और प्यार भी होना चाहिए।
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और इन सब कुकीज, इन सब क्रैकर्स, बिस्किट्स, रागी कुकीज जो आप बनाते हैं, इसमें से ड्राई केक्स जैसे, तो इसमें से अगर आप मेरे श्रोताओं के लिए कुछ सजेस्ट करें कि वो अगर कुक स्मार्ट पे आए तो वो कौन सा प्रोडक्ट लें, सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट क्या है आपका और आपको क्यों अच्छा लगता है वो सबसे ज्यादा?
1: जी, मुझे सबसे ज्यादा आटा जैगरी केक जो ड्राई केक है वही पसंद आता है, क्योंकि वो हेल्दी ऑप्शन है, प्योर घर के पीसे हुए आटे से बनाते हैं हम, जैगरी से बनाते हैं। उसके साथ साथ में अगर आप बच्चों को भी खिलाते हैं तो वो बहुत हेल्दियर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स रहते हैं, जो आज के टाइम पे बच्चे होल जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, खाना पसंद नहीं करते हैं। तो हम उन्हें एज अ केक के रूप में उन्हें देते हैं तो वो बच्चे भी उन्हें कंज्यूम करें ताकि उनका जो प्रोटीन और मिनरल्स वगैरह हैं वो सब उन्हें मिले। तो अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारा एक बार आटा जेगरी केक जरूर ट्राई करें।
0: बिल्कुल करेंगे मैम, बिल्कुल करेंगे। आपने कह दिया तो मान लीजिए हो ही गया। और कुक स्मार्ट बाय कोमल सच में कुक स्मार्ट है, और स्मार्ट कुकिंग है, स्मार्ट रेसिपीज हैं, हेल्दी रेसिपीज हैं, डाइट को ध्यान रखते हुए रेसिपीज क्यूरेट की गई हैं। तो सभी श्रोतागण जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप जयपुर में हैं, और अगर जयपुर में नहीं भी हैं तो भी कुक स्मार्ट बाय कोमल को एक्सप्लोर करें, इनके इंस्टाग्राम पेज हैंडल्स पे जाएं और जरूर ऑर्डर करें आटा जागरी केक। जी हाँ, आटा जागरी केक। मैम आपके इंस्टाग्राम हैंडल के बारे में अगर बता सके हमारे श्रोताओं को, और जहां जहां आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है तो हमारे श्रोता जान सकें कि आपको कैसे रीच करना है।
1: जी मैम, मेरा अभी जो सिर्फ एक ही पेज है वो है, हम इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं वो है कुक स्मार्ट बाय कोमल के नाम से ही है। इसके अलावा अगर आप हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं 8619249781 पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, 8619249781 पर आप रीच करिए कोमल जी को, कुक स्मार्ट बाय कोमल को, और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी क्लिक करें और जरूर ऑर्डर करें अपना केक, अपना हेल्दी केक। इन्हीं बातों के बीच हम सुनेंगे एक और बहुत ही इंस्पिरेशनल गीत, बिल्कुल कोमल जी की पर्सनालिटी से मैचिंग हुआ हुआ, बिल्कुल उनकी फरमाइश पे आया हुआ, कर हर मैदान फतेह, फिल्म संजू।

0: एक और बेहतरीन गीत, बहुत ही जिंदगी देने वाला गीत है ये, एक जीवन का फलसफा है ये, इसको अपना लिया जाए तो बहुत आगे बढ़ा जा सकता है जीवन में। थैंक यू कोमल जी।
1: थैंक यू मैम
0: जी, आगे चलना चाहूंगी, सपनों की उड़ान लेते हैं। मान लीजिए अभी आज आपके सामने आपका स्टूडियो है, कुक स्मार्ट बाय कोमल का स्टूडियो बन चुका है, सब रेडी है, सब इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सुंदर है, एस्थेटिक है, जैसा आपके दिमाग में डिजाइन है उसी डिजाइन से बना हुआ है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी, आपको इस स्टूडियो में एंटर करना है और इस स्टूडियो में एंटर करके सबसे पहला एक कोई केक बेक करना है, या कोई पहली चीज, चलिए केक छोड़िए, कुछ भी बेकिंग करनी है, वो पहली जो बेकिंग आप करेंगे वो क्या होगी और किसको खिलाएंगे और क्यों उसी आइटम को आप चूज करेंगे बेक करने के लिए?
1: बिल्कुल मैम, सबसे पहले अगर मैं, जब मेरा स्टूडियो ओपन होगा, मैं उसमें जाकर के जो सबसे पहली चीज बेक करूंगी, मैं वही केक होगा जो मेरी बेकिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी, मिक्की माउस का केक। क्योंकि वो केक था जिससे मुझे, मेरे जो बेकिंग पेशन है उसे केक मिली थी और उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। और वो जो केक है वो सबसे पहले मैं अपने उसी बेबी को खिलाऊंगी जिसके लिए मैंने ये केक बनाया था। अनली की ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली मेरी फैमिली होगी एंड मैं अपनी बेकिंग जर्नी वहां से स्टार्ट होगी। मैं वहां पे रोज कुछ नया एक्सपेरिमेंट करूंगी, धीरे धीरे दूसरों को भी बेकिंग स्किल्स जो है वो सिखाना शुरू करूंगी। मेरे लिए वो स्टूडियो सिर्फ एक किचन नहीं होगा, वो मेरी जर्नी का वो हर स्ट्रगल और हर अचीवमेंट की मुझे याद दिलाएगा।
0: क्या बात है, क्या बात है मैम, बहुत ही खूबसूरत जवाब और बिल्कुल सही कहा आपने कि हर इंसान सक्सेसफुल होने के बाद अपने रूट्स पे आना चाहता है वापस और वहीं से शुरू करना चाहता है जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी, उसी को एहसास करना चाहता है, उसी को फिर से जीना चाहता है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका ये स्टूडियो अभी तो कल्पना में था और बहुत जल्दी वो रियलिटी में आ जाए और उसमें आप जाके वही मिक्की माउस केक बनाए और इस बार परफेक्शन से बनाए, जो परफेक्शन आप चाहती हैं, जो इंट्रिकसीज ऑफ फाइननेस ऑफ द केक आप चाहती हैं, और आपके प्यारे से सन को खिलाएं। उनका नाम बताएं प्लीज।
1: गर्वित।
0: तो गर्वित, विश यू वेरी वेरी वेरी सक्सेसफुल लाइफ। हम सब की तरफ से, पूरी एसएन रेडियो टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, और आपकी मम्मा बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत लकी हैं कि कोमल जी आपकी मदर हैं, तो उन्हें हमेशा सपोर्ट करें जैसे आप करते आए हैं। आगे चलते हैं मैम, आज का हमारा आखिरी सवाल है, मन तो नहीं कर रहा बट समय बलवान है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये हमारा मीठा सवाल है थोड़ा सा, अगर आप अपनी पूरी इस केक जर्नी को, इस पूरी लाइफ जर्नी को एक केक ही मान लें, बिकॉज केक से ही आपकी शुरुआत हुई थी, तो उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बिना वो केक बन ही नहीं सकता, वो क्या होगा?
1: बिल्कुल सही कहा मैम, जो बेकिंग का जो मेरा पैशन है, अगर मैं उसे पूरी जर्नी के रूप में एक वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो सिर्फ होगा मेरी फैमिली का प्यार और सपोर्ट, क्योंकि उसके बिना मेरी ये बेकिंग जर्नी पॉसिबल ही नहीं थी। पैशन और पैशन दोनों जरूरी है और खुद पर भरोसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आपके अपने लोग आप पर बिलीव करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं और डिफिकल्ट डेज में सपोर्ट करते हैं तो जर्नी थोड़ी और इजियर हो जाती है। तो शायद मेरी रेसिपी कुछ ऐसी ही है जो फैमिली का प्यार, पैशन और जो पेशेंस है, मिस्टेक से लर्निंग और खुद पर थोड़ा सा जो भरोसा है उससे मिलकर के हमारा केक बनता है। और हाँ, थोड़ी सी स्वीटनेस तो बेकिंग की वजह से होनी भी चाहिए क्योंकि ये बेकिंग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए तो जीवन का सबसे खूबसूरत, सबसे पसंदीदा फ्लेवर ही मीठा है। तो आज का ये एपिसोड भी बहुत मीठा मीठा रहा, बहुत सारी मीठी मीठी बातें हुई, केक की बातें हुई, मिकी माउस की बातें हुई और आपके पैशन की बातें हुई, आपकी फैमिली सपोर्ट की बातें हुई। बहुत ही मजा आया मैम आपसे बात करके, आप एक बहुत सरल, सॉर्टेड, पैशनेट, ग्राउंडेड इंसान है, रूट से जुड़ी हुई है, और मैं आपको बहुत बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ आपकी जर्नी के लिए। जल्दी आपका स्टूडियो बने, जल्दी आप वहां पहुंचे जहां आप चाहती हैं मैम। कंग्रेचुलेशन।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: कोमल जी, आपकी कहानी ने हमें ये याद दिलाया कि बड़े बड़े सपने अक्सर छोटी छोटी शुरुआतों में जन्म लेते हैं। एक मिकी माउस केक से शुरू हुआ ये कुकिंग और बेकिंग का सफर कुक स्मार्ट बाय कोमल तक पहुंच गया है और आगे आगे आपकी बेकिंग स्टूडियो के सपने की तरफ जल्दी जल्दी से बढ़ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी जर्नी और उसमें जुड़े हुए इतने प्यारे लोगों और यादों को हम सभी के साथ साझा किया। दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन एस एन रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। याद रखिए, परफेक्ट शुरुआत का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत तो करिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए सफर के साथ, एक नए रंग के साथ। नमस्कार।

0: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। नकारात्मकता। दोस्तों याद रखें कि जिंदगी हमेशा उस तरह नहीं चलती जिस तरह से हम चाहते हैं। ऐसे में चीजों को लेकर शिकायत करने के बजाय हमेशा चीजों के प्रति पॉजिटिव रवैया ही रखें। सफल लोगों को जब भी कभी जिंदगी में नेगेटिविटी घेरती है तब वो उसे अपनी पॉजिटिव सोच के जरिए बाहर निकल आते हैं। आपको भी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा शिकायत करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढें, उनसे निपटें और बस आगे बढ़ें। निगेटिविटी से लड़कर ही आप सफल हो सकते हैं। बने रहिए आरजे समीर के साथ। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगें, तो दोस्तों समझ लेना जीना आ गया है।

नसीबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे।

माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोक।

जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक

0: झुककर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
1: है समय प्रतिकूल माना, पर समय अनुकूल भी है। शाख पर एक फूल भी है, घन तिमिर में एक दिए की टिमटिमाहट भी बहुत है, एक सूने द्वार पर बेजान आहट भी बहुत है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोनू ने पूछा, किस बात से परेशान हो? मोनू ने कहा, यार घर वालों से बहुत परेशान हूँ। सोनू ने कहा, अब घर वालों ने क्या कर दिया? मोनू ने कहा, जिस दिन सोचता हूँ कि कुछ नया करूंगा, उसी दिन गेहूं पिसवाने भेज देते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दुख लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है जो पहले पानी की भाषा में आदमी की आंखों से आता है और फिर हाथों की धरोहर बन जाता है।

जो कुछ पुराना है मोहक तो लगता है, टूटने का दर्द मगर सहना ही पड़ता है। बहुत कुछ टूटता है तब नया बनता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं, नई ड्रेस पहनकर तुम्हारी बारात में जा रहा हूँ।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ऑपरेशन के बाद मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब मैं बिल्कुल रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, अरे बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

0: तो दोस्तों रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम पर।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम। आप रेडियो आपकी बातें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है। मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने अपने लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मींस एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे है।

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक्स।
2: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

नहीं देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

पहचाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा चांस से दोनों प्लीज सुनो, कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है?
2: हाँ।
3: ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने तक तेरे लिए बचता रहेगा। कोई गा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है। सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर कलाकार धर्मेंद्र। जी हां, धर्मेंद्र का पूरा नाम है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। तो आइए दोस्तों, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। कहना ना होगा दोस्तों, आप भी मानेंगे कि बॉलीवुड में धर्मेंद्र सबसे ज्यादा हैंडसम इंडियन एक्टर माने गए। तो लीजिए उन्हीं की फिल्म का एक गीत हो जाए।

आपको पता ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने

रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। दोस्तों, आपको पता होगा, फिर भी बताते चलते हैं कि धर्मेंद्र को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो कि सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है भारत में। तो लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? धर्मेंद्र का जन्म सहनवाल नामक एक गांव में, जो कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, हुआ था।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: भैया हमेशा स्पेशल बनकर रहा करो, आम बन जाओगे ना तो अचार बना दिए जाओगे।

आपको एक मजेदार बात बताते हैं दोस्तों, धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल के बेटे का नाम भी धर्म रखा गया उन्हीं के नाम पर। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी की फिल्म का एक और गीत।

दोस्तों धर्मेंद्र 1998 से लेकर आज तक कैरेक्टर रोल्स करते आए हैं। उन्होंने नए कलाकारों को हमेशा प्रोत्साहित किया, जगह दी और उनका आशीर्वाद सभी नए एक्टर्स पर हमेशा बना रहता है। तो लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

आपको मालूम ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जगह है बीकानेर राजस्थान की। लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की एक फिल्म का ये गीत।

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना है। यमला पगला दीवाना।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: मिलते।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा गजल का कार्यक्रम अल्फाज से एहसास तक। गजलें यानी कि कुछ खूबसूरत अल्फाज, कुछ गहरी भावनाएं और दिल को छू जाने वाली धुनें। तो चलिए कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ को भूल जाएं और खो जाएं गजलों की इस खूबसूरत दुनिया में हमारी ही रेडियो दोस्त आरती जी के साथ।

0: नाराज क्यों होना किसी से, नजर में रखना छोड़ दीजिए, परवाह कर लीजिए चाहे, पर जताना छोड़ दीजिए। कैसे भी बसर करे कोई, हक जताना छोड़ दीजिए। बेचैन करे खामोशी तो भी आवाज देना छोड़ दीजिए। आदाब, नमस्कार और दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के साथ। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक की इस खास महफिल में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कॉरपोरेट की दुनिया के ऊंचे ओहदों पर रहते हुए भी अपने भीतर के कलाकार को हमेशा जिंदा रखा। IT सेक्टर के इतने बड़े ओहदे पर वाइस प्रेसिडेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते हुए भी जिन्होंने संगीत से अपना नाता कभी टूटने नहीं दिया, जो सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि मराठी, कन्नड़ और तुलु जैसे कई क्षेत्रीय, कई रीजनल जुबानों में अपनी गायकी से दिलों को जीतते हैं। स्टेज शो से लेकर इंटरनेशनल रेडियो स्टेशन रेडियो जिंदगी US तक अपनी आवाज का जादू बिखेर चुके बहुत मशहूर गायक और कलाकार श्री भरत शेट्टी जी। भरत जी, हमारी इस सुहानी महफिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है, आइए तशरीफ रखिए।
1: शुक्रिया आरती जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया, थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका भरत, हमारी महफिल को अपनी ही महफिल जानिए और बहुत सुकून से बैठिए। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं भरत, बिना किसी देरी के। आपसे पहले मैं ये पूछती हूँ कि भरत, आप IT सेक्टर में वाइस प्रेसिडेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के एक ऊंचे ओहदे से रिटायर हुए हैं। अक्सर लोग कॉरपोरेट की बहुत बिजी कॉरपोरेट जिंदगी में अपनी कला को पीछे ही छोड़ देते हैं, लेकिन फोर्थ क्लास में आपके पिताजी द्वारा म्यूजिक एकेडमी में दाखिला दिलाने से शुरू हुआ और हारमोनियम और 11 साल की उम्र में लाइट वोकल्स की तालीम का सफर आज तक जारी है। यानी आपने फोर्थ क्लास से ही हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी इस सुरीली नींव, इतनी म्यूजिकल फाउंडेशन में आपके पिताजी और गुरुजी का कितना बड़ा योगदान रहा, और IT की टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया के बीच संगीत आपके लिए कितना बड़ा संबल या सपोर्ट बना?
1: जी, सबसे पहले पिताजी और गुरुजी के बारे में कहूंगा।
0: जी,
1: बहुत बहुत कम उम्र में ही मुझे एक संगीत विद्यालय में भर्ती कराने का मेरा पिताजी का ये जो फैसला था, मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा मैं समझता हूँ। पिताजी ने बचपन में ही मुझे सही दिशा दी, उनका विश्वास ही मेरी पहली प्रेरणा बना। अब गुरुजी के बारे में बात कहूं तो गुरुजी ने मुझे सिर्फ गाना या बजाना नहीं सिखाया, बल्कि संगीत की आत्मा से रूबरू कराया।
0: वाह,
1: रंगों की, रागों की जो शुद्धता, फिर रियाज का महत्व और कॉन्फिडेंस, उन्होंने ही मेरे में भर दिया है। आज मैं जो कुछ भी संगीत में कर पाता हूँ, उन दोनों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद और कठिन ट्रेनिंग की ही मजबूत नींव है। और अगर IT की दुनिया में संगीत किस तरह से मुझे सपोर्ट देता रहा, उसके ऊपर अगर कहना है तो मैं कहूंगा, आपको आपको भी पता होगा कि IT और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो मानसिक रूप से वो थका देने वाली होती है, जहाँ पे दिन भर आप यू नो स्क्रीन के सामने बैठे रहे और कोडिंग करते रहो, फिर डेडलाइंस होता है जिसके ऊपर आपको सब डिलीवरीज देना होता है, ऐसे में संगीत मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर था, यू नो, जो जो मेरे तनाव को दूर करता था और एक तरीके से वो जो एक बैलेंस मेंटेन करता था, जहाँ टेक्नोलॉजी दिमाग के लॉजिकल हिस्से को सक्रिय रखती थी ना, उसी तरह से ये जो संगीत जो है वो मेरे मेंटल फ्रेमवर्क को बैलेंस में रखता था। तो जब भी मैं काम के बीच में ब्रेक लेकर म्यूजिक सुनता हूँ तो मेरे दिमाग, यू नो, कंप्यूटर के भाषा में कहते हैं ना, जो रीबूट हो जाता
0: वेरी नाइस,
1: था।
0: बहुत खूब बहुत खूब। ये तो वाकई आपने बहुत बड़ा जबरदस्त आंसर दिया है, और ये वाकई मैं यही सोच रही हूँ कि कितना मुश्किल होता है आईटी में जो लोग काम करते हैं, कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उनकी। और आपकी तो आप तो बहुत लकी रहे कि आपको आपके फादर साहब ने ही आपको इतना सपोर्ट किया, और फिर आप बहुत और भी ज्यादा लकी रहे कि आपको ऐसे गुरु मिले जिन्होंने आपकी सिर्फ संगीत की नहीं सिखाया, आपकी आपकी एक आपकी ग्रूमिंग की उन्होंने एक सही इंसान बनाने में। क्योंकि एक अच्छा कलाकार, एक सही इंसान, एक गुरु ऐसा मिल जाए तभी बन पाता है। और बिल्कुल बहुत खूबसूरत। तो आइए इसी नोट पर सुनते हैं आपकी सुरीली यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, और आपने हमें ये बड़ी सदाबहार सी गजल गा के भेजी है भरत। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, जगजीत सिंह साहब की गाई हुई। तो आइए फिर आपके साथ अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं आपकी गाई हुई ये खूबसूरत सी गजल।

0: वाह भरत, क्या ही गाया है! आपकी आवाज की तो मैं कायल हो गई थी। कल परसों आपका जो प्रोग्राम आया था आज के कलाकार में, मुझे तभी समझ में आ गया था कि आप बड़े उम्दा किस्म के सिंगर हैं। बहुत खूबसूरत गाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर गजल सुनाने के लिए।
1: शुक्रिया।
0: तो आगे बढ़ते हुए भरत, आइए अब आपसे ये पूछते हैं कि बचपन के उन सुरीले संस्कारों से आगे बढ़ते हुए आपने कॉलेज के दिनों में और

0: चीज़ें हैं। इन दोनों ही मीडियम्स में परफॉर्म करने का आपका जो अनुभव है एक कलाकार के तौर पर, कितना अलग रहा और कितना खास रहता है, कुछ बता पाएंगे इस बारे में?
1: जी, एक कलाकार के रूप में ये दो बिल्कुल अलग और अद्भुत दुनिया का एक अनुभव है।
0: जी,
1: जैसे लाइव शोज के बारे में अगर बात करूं तो स्टेज पर जब हजारों की भीड़ आपके सामने होती है ना, तो उनके चेहरों की मुस्कान, तालियों की गड़गड़ाहट और वंस मोर की आवाज सीधे दिल को छूती है। जी, वहां की ऊर्जा जो है ना वो गिव एंड टेक जैसा, जैसे कहते हैं ना हम लोग कि जितना जोश आप जनता को देते हो उससे दोगुना प्यार आपको वापस मिलता है। लेकिन ये हुई बात लाइव स्टेज परफॉर्मेंस, अगर यही लाइव अगर कॉर्पोरेट इवेंट में करता हूँ तो उसका अंदाज एक अलग होता है, उसका माहौल एक अलग होता है। यहाँ आपको अलग अलग तरह के दर्शक मिलेंगे, जैसे युवा होंगे, बुजुर्ग होंगे, बहुत मौज मस्ती पसंद करने वाले और शांत स्वभाव के लोग होंगे। इसके लिए यहाँ मिलने वाला जो रिस्पॉन्स शायद उतना जोश भरा ना हो जितना किसी लाइव स्टेज शो में होता है।
0: बिल्कुल
1: जी, और पब्लिक फेस्टिवल मतलब हम बंबई में काफी कुछ शोज ऐसे फेस्टिवल में करते हैं, जैसे गणपति का फेस्टिवल होता है, नवरात्र होता है, यहाँ पर तो कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हर पल रोमांच से भरा होता है यहाँ पे, यू नो।
0: बिल्कुल
1: तो जी, तो ये एक अलग तरीके का एक एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके विरुद्ध अगर रेडियो पर गाना होता वो बिल्कुल ही अलग बात है। चाहे वो यूएस का चैनल हो या कोई और चैनल हो, लाइव स्टेज शो का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। जैसे रेडियो पर क्या है ना कि आपका चेहरा नहीं दिखता किसी को, वो सिर्फ आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंचाती है
0: जी।
1: और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो आपके लिए ऑडियंस इनविजिबल है। रेडियो की खूबसूरती यह है कि आपकी आवाज अलग अलग लोग यू नो कारों में सुनते हैं, कभी घर में कुछ काम करते हुए सुनते हैं, तो कभी यू नो जो ट्रैवल करते हुए सुनते हैं, तो ये अलग एहसास है। क्योंकि दर्शक दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे परफॉर्मेंस का आकलन सुनने वाले के फीडबैक के आधार पर ही किया जाता है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही अनुभव है ना अपने आप में बेहद खास है,
0: बेहद खास है।
1: जी जी,
0: मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। मैं भी यही सोच रही थी कि जब आप ऑडियंस के सामने हैं, स्टेज पर हैं, तो एक एनर्जी खास तरह की आपके अंदर भर जाती है और इतने सारे लोगों को देख के तो नर्वसनेस भी होती है और फिर एनर्जी भी आ जाती है। जब एक बार आप स्टार्ट कर देते हो तो फिर नर्वसनेस चली जाती है और उसके बाद फिर एनर्जी से ही बंदा भर जाता है गाते हुए, है
1: ना।
0: और फिर रेडियो में आपने तो रेडियो पे भी आपने बतौर आर्टिस्ट गेस्ट आर्टिस्ट गाया है और वो भी यूएस में, तो वहां के मतलब कुछ अलग सा कोई एक्सपीरियंस था वहां के रेडियो स्टेशन पे गाने का?
1: देखिए, एक्सपीरियंस तो एज अ कलाकार तो मुझे गाना ही था। सिर्फ इतना है ना कि वहां का जो लिसनर्स जितने भी है, मैं हिंदी गाना गा रहा था वहां पर, तो जितने भी हमारे ऑडियंसेस है ना वो सब इंडियंस ही होते थे ज्यादातर।
0: या इंडियंस या पाकिस्तानी भी हैं जो भी हिंदी गाने सुनते हैं।
1: बिल्कुल, एशियन में से भी इंडियन इंडो पाकिस्तान के जो लोग वो ज्यादातर आपके ऑडियंस होते थे, तो उनसे रिलेट करना आसान हो जाता था।
0: बिल्कुल
1: जी, तो मुझे लगता है वो कुछ यहाँ के रेडियो में या वहाँ के रेडियो में अगर गाओ तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा फीलिंग।
0: बिल्कुल
1: जी जी जी, बहुत।
0: और ये भी आपने बहुत खूब बात बोली कि अभी कल परसों भी हम कोई बात हो रही थी रेडियो पे ही, तो कि जब हम रेडियो पे गा रहे होते हैं या प्रोग्राम दे रहे होते हैं तो कमेंट्स में जब आ रहा होता है तो मैं भी कई बार लिखती हूँ कि मैं बाहर आई हुई हूँ, मैं पिज्जा खा रही हूँ तनुषा, और मैं तुम्हारा प्रोग्राम सुन रही हूँ, ठीक है, तो आप कुछ भी काम करते हो या मैं चाय बना रही हूँ तब भी मैं तुम्हारा प्रोग्राम सुन रही हूँ, तो मतलब हम रेडियो तो सुन ही रहे हैं ना। पुराने जमाने में जब रेडियो ही था तो ऐसे ही करते थे, घर के सारे काम हमारी मम्मी और सब कुछ सब लोग करते रहते थे और रेडियो चलता रहता था, तो वही बात है। तो आइए इसी नोट पर सुनते हैं आपकी ये दूसरी गजल।

आपने जो गा के भेजी है जग्गी सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई है ये गजल, ये है शायद कौन सी पिक्चर की है ये, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। बहुत खूबसूरत। तो आइए दोस्तों, भरत ने ये बहुत सुंदर सी गजल गा के भेजी है, हम सब मिलकर सुनते हैं इसको।

0: बहुत खूबसूरत भरत, एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि आप बहुत नफीस किस्म के सिंगर हैं। बहुत बहुत सुंदर गाया आपने। तो
1: थैंक यू।
0: आइए भरत, अब आपसे तीसरा सवाल ये है कि परफॉर्म करने के इस अनूठे अनुभव के बीच एक और खास बात आपकी गायकी में जो दिखती है वो ये है कि आप सिर्फ हिंदी फिल्म गानों या गजलों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आप तो मल्टीलिंगुअल गायक हैं, बहुभाषी गायक हैं। हिंदी के साथ साथ आप मराठी, कन्नड़ और तुलु में भी गाते हैं। तो अलग-अलग भाषाओं के अल्फाज, उनके प्रोनाउंसिएशन यानी उनके उच्चारण और उनकी रूह को पकड़कर गाना कितना चुनौतीपूर्ण या कितना चैलेंजिंग होता होगा या होता है, और ये डाइवर्सिटी, ये विविधता आपकी गायकी को कितना रिच बनाती है, कितना समृद्ध बनाती है।
1: देखिए, मैं मुंबई में पैदा हुआ और वही पला बड़ा हूँ, तो
0: जी,
1: मेरा कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों मुंबई है।
0: अरे वाह,
1: इसलिए मेरी मराठी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ की वो लोकल लैंग्वेज है।
0: जी,
1: चूंकि मेरा परिवार मूल रूप से मैंगलोर का है यानी कर्नाटक का, इसलिए तुलु मेरी मातृभाषा है।
0: ओ, ओके,
1: हाँ जी। और कन्नड़ा मैंने बचपन में अपने कन्नाड़ी का पड़ोसी जो रहते थे हमारे पास, तो उनसे सीखी। और हिंदी तो मेरी राष्ट्रभाषा है। तो इसके लिए इन भाषाओं में गाना इतना मुश्किल मुझे नहीं लगा। लेकिन जब मराठी, हिंदी, तुलु और कन्नड़ जैसे भाषाओं की बात करते हैं ना, तो दो तीन बातों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे जैसे शब्द, वो शब्द का मतलब सबसे पहला समझना होता है कि हर एक शब्द का मतलब उसका थोड़ा सा मीनिंग अलग ही होता है हर एक लैंग्वेजेस में। और फिर उस शब्द को जिस तरह से आप प्रोनाउंस करते हो, उच्चारण जो है ना, वो बहुत ही मायने रखता है। और तीसरी बात जो है वो उस शब्द के अंदर जो इमोशंस को फील करना पड़ता है, यू नो, तो उसको पकड़ने की चुनौती जो वो ज्यादा ही दिलचस्प हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए भाषाओं में, इन सब भाषाओं में गाना इतना मुश्किल मुझे नहीं लगा,
0: जी,
1: क्योंकि इन भाषाओं की बेसिक्स तो मुझे पता थी, पर चुनौतीपूर्ण तो जरूर था।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने से तो मुझे लगता है कुछ भी आप कर सकते हो।
0: बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया। और मुझे आपकी बात से आज ये पता चला कि मैं सोचती थी जो कर्नाटका में है तो वो सब लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं, लेकिन आपने बोला कि आपकी मादरी जुबान, आपकी मदर टंग तुलु है, मतलब जो कन्नड़
1: जी
0: लोग हैं वो तुलु भाषा में बात करते हैं।
1: नहीं, वैसा नहीं है। एक्चुअली कैसा है, मैंगलोर के जितने लोग हैं ना,
0: अच्छा,
1: वो तुलुनाडु बोलते हैं उस जगह को,
0: ओ
1: हम तुलु बात करते हैं। और तुलु जैसा है ना, वो जैसे कोंकणी भाषा है, उसको
0: हाँ
1: स्क्रिप्ट
0: हाँ
1: नहीं होता है, उसको
0: ओ
1: लिपि नहीं होता है, वैसे तुलु में भी लिपि नहीं होता है।
0: अच्छा,
1: तो तुलु वाले को अगर किसी को खत लिखना होता है तो वो कन्नड़ भाषा में लिखते हैं
0: ऐसे देखा
1: जी, ऐसा
0: आपने,
1: है,
0: मुझे
1: बढ़ा
0: मेरा विज्ञान आपने चक्षु खोल
1: दिया
0: दिया।
1: मैंने
0: मैं सोचती थी कन्नड़ वाले, कर्नाटका वाले, बेंगलोर वाले सारे तो कन्नड़ ही बोलते हैं। अब वो कन्नड़ बोलते हैं लेकिन वो ग्रामर वाली भाषा,
1: वो कन्नड़ा
0: लेकिन
1: है।
0: और बिना ग्रामर के जो भाषा है वो तुलु है, और जब तुलु वाले लोगों को लिखना होता है तो वो कन्नड़ में ही लिखते हैं।
1: जी,
0: ठीक है,
1: लेकिन हम कनाडा में लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, तो हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं उसको
0: ओके, वेरी नाइस, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। और वैसे भी लाइक अलग अलग भाषाओं के अल्फाज और उनके उच्चारण, उनके प्रोनाउंसिएशन, और आपने बोला ना उनकी रूह को पकड़कर गाना बहुत चैलेंजिंग होता है, और वाकई। और फिर संगीत की तो वैसे भी अपनी एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है भरत जी, जो उसका
1: एग्जैक्टली
0: काम ही ये है कि वो सीधे दिलों में ही उतरता है। अलग अलग बोलियों से या भाषाओं की अनुभव से या गायकी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका काम ही ये है, अगर कोई सुर में गा रहा है तो कौन सी मर्जी भाषा हो, यहाँ पर कितने प्रोग्राम होते हैं हमारे SN रेडियोज पे, कन्नड़ मलयाली आके सब लोग बोलते हैं, वी ऑल नॉन कन्नड़ नॉन उस भाषा के लोग भी हम सुनते हैं, और कोई मधुर और सुंदर संगीत है तो वो दिल को छू ही जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो आइए इसी नोट पर हम सुनते हैं पंकज उदास साहब की, आपने ये जो गजल हमें गा के भेजी है बड़ी संजीदा सी है, बड़ी सीरियस सी, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। तो आइए दोस्तों, भरत जी ने ये बहुत सुंदर और बहुत सीरियस सी गजल गा के भेजी है, हम सब मिलकर सुनते हैं।

0: वाह कई भरत जी, जितनी सीरियस गजल है आपने उतने ही खुलूस से, उतने ही उसको सोच से गाया, बहुत खूब बहुत खूब।
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी।
0: आपने गाया ही इतना अच्छा है भरत, वाकई मजा आ गया। तो अब आगे बढ़ते हुए भरत, अब आप हमें ये बताइए कि इतनी भाषाओं के इस संगम से अगर हम डिजिटल दौर की तरफ देखें, तो स्कूल कॉलेज में कंपटीशन जीतने से लेकर फिर अमेरिका के ऑनलाइन इंटरनेट शो में गाने तक आपका दायरा लगातार बढ़ता ही गया। तो तकनीक के इस दौर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने सरहदों के पार के संगीत प्रेमियों यानी ग्लोबल म्यूजिक लवर से जुड़ने का कितना बड़ा रास्ता खोला, और इसका आपकी म्यूजिकल जर्नी पर क्या असर पड़ा?
1: देखिए आरती जी, स्कूल और कॉलेज के दिनों में जब हम किसी प्रतियोगिता में गाते थे तो हमारी आवाज केवल उस हॉल या ऑडिटोरियम के दीवारों तक ही सीमित रहती थी। लेकिन आज तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उन दीवारों को गिराकर पूरी पूरी दुनिया को एक मंच बना दिया है। जैसे आज अमेरिका, यूके या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा संगीत प्रेमी सिर्फ एक क्लिक के जरिए आज हमारा SN रेडियो का मेरा ये लाइव इंटरनेट शो से जुड़े होंगे। तो ये अलग अलग देशों के लोग जब एक ही समय पर लाइव चैट में जुड़ते हैं और गानों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं
0: जी
1: तो महसूस होता है ना कि संगीत के लिए अब कोई क्या कहते हैं ना उसे, वीजा या पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है।
0: वाकई
1: तो अब आपका सवाल ये भी था कि मेरे म्यूजिकल सफर पर इसका क्या असर पड़ा, तो मेरा जवाब है देखिए, सबसे पहली बात तो ये डिजिटल माध्यम ने मुझे सीधे अपने श्रोताओं से जोड़ दिया है
0: बिल्कुल
1: और रियल टाइम में मुझे कमेंट्स मिलने लगते हैं जब सात समंदर पर बैठे लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो
0: जी
1: मेरा मोटिवेशन मिल जाता है लाइफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और फिर एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है कि उनके सुझाव और पसंद मुझे अपनी गायकी में लगातार सुधार करने का है ना कुछ कुछ
0: मौका
1: प्रेरणा
0: मिला।
1: देते रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: या
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दैट्स इट
0: सही बोला आपने, बहुत बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि सचमुच तकनीक ने संगीत की सारी सरहदें मिटा दी हैं। आज मुंबई में बैठकर आप सात समंदर पार बैठे लिसनर्स के दिलों को छू लेते हैं, जैसा कि आपने बोला, और यही कला की सबसे बड़ी जीत भी है। हमको
1: जी।
0: टेक्नोलॉजी ने कितना फायदा पहुंचाया है कि हम आज सारे हम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर सुन भी रहे हैं, साथ साथ कमेंट्स भी दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था। तो ये तो वाकई बहुत मजा आता है, इंस्टेंट इंस्टेंट बूस्टिंग मिलती रहती है रेडियो पर भी,
1: जी जी
0: स्टेज शो के अलावा भी। तो इट्स वेरी गुड। तो आइए
1: बिल्कुल।
0: एक नोट पर आपकी अब ये गजल सुनते हैं। या आपने हमें कौन सी गजल भेजी है जगजीत सिंह साहब की? होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है, इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है? नहीं नहीं ये नहीं, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। हाँ
1: जी जी
0: बिल्कुल।
1: जी
0: इतनी गजलें सुन सुन के ना गजलें भी बीच में मिक्स हो जाती है।
1: जी
0: तो आइए दोस्तों सुनते हैं, भरत ने ये बहुत खूबसूरत गजल गा के भेजी है हमारे साथ, हम सब मिलके सुनते हैं।

0: बहुत खूबसूरत भरत, बहुत खूबसूरत गाई आपने ये गजल। कोई आसान नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छी गाई, बहुत
1: थैंक यू
0: खूबसूरत।
1: सो मच, थैंक यू सो मच आरती।
0: अच्छा भरत, तो ये बताइए अब कि आपकी इस ग्लोबल म्यूजिकल जर्नी के पीछे आपके परिवार का भी बहुत बड़ा संबल रहा, सपोर्ट रहा। आपके परिवार में आपकी धर्मपत्नी है, दो बेटे हैं और बहू भी है, जैसा कि आपने बताया। तो रिटायरमेंट के बाद जब इंसान के पास अपने जुनून को जीने का पूरा वक्त होता है, तब एक मल्टी जॉनर आर्टिस्ट के रूप में बॉलीवुड गजल, रीजनल संगीत साधना, इस सुरीली यानी इस म्यूजिकल लाइफस्टाइल में आपके परिवार का कितना सहयोग रहता है? और संगीत आपके जीवन को कितनी आत्मसंतुष्टि या इनर फुलफिलमेंट देता है?
1: आरती जी, किसी भी कलाकार की कला मेरे हिसाब से तभी पूरी तरह खिल पाती है ना, जब उसे अपनों का साथ मिले।
0: बिल्कुल
1: परिवार हमेशा सहयोग का पहला आधार होता है
0: जी,
1: और हर पहलू में उनकी भागीदारी बहुत मूल्यवान होती है।
0: बिल्कुल
1: मेरी पत्नी हमेशा से ही मेरे लिए एक बड़ा नैतिक सहारा रही है, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी हो या मेरा कोई शौक पूरा करना हो। मेरे बच्चे और बहू ने भी सिर्फ मेरा हौसला नहीं बढ़ाया, बल्कि वो मेरे काम की आलोचना भी करते रहते हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ा एक सीख है।
0: जी
1: जी, और परिवार जब आपका पहला श्रोता बन जाता है ना, तो आपकी वो जो हौसला अफजाई करता है, और जरूरत पड़ने पर कभी आहिस्ता प्यार से सुधार की सुझाव भी देते हैं।
0: जी
1: हाँ, तो वो एक कलाकार का आत्मविश्वास मुझे लगता है दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: और रोजमर्रा की जिंदगी में संगीत का क्या रोल है, ये आपने पूछा, तो मैं समझूंगा कि आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद लोग आलसी हो जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन अगर आपकी कोई हॉबी हो तो आपको उसे जरूर जारी रखना चाहिए, क्योंकि उसका आनंद लेने के लिए आपके पास भरपूर समय होता है।
0: बिल्कुल
1: है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ज्यादातर खाली समय अच्छा संगीत सुनने या ऑनलाइन डिजिटल सिंगिंग प्लेटफॉर्म पर गाने में बिताता हूँ, जिससे मुझे बड़ा फ्रेश फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है।
0: जी
1: बेसिकली आई लव दिस स्टेज ऑफ लाइफ।
0: वाह, ब्यूटीफुल। कितना दोस्तों देखो, कितना सुंदर जवाब दिया भरत ने कि आप अगर अपने शौक से जुड़े हुए हैं, अपने पैशन से जुड़े हुए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर लोगों के लिए जिंदगी बड़ी बोझिल सी और बड़ी उबाऊ सी हो जाती है। तो और अगर कोई आपका पैशन हो और आप जिस तरीके से कह रहे हैं, और अगर आप उसमें मसरूफ हो जाते हैं, तो फिर पता भी नहीं चलता टाइम कहाँ गया और वक्त कैसे बीत गया, वाकई। और फिर आपने बोला कि आपके परिवार में आपके बच्चे, वो भी आपको एक एक किस्म से हेल्दी क्रिटिसिज्म है ये, कि अगर अगर मतलब उस चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे आपके कला में निखार ही आता है, आप उसको सुधार पाते हैं। तो इट्स वेरी नाइस कि आपके बच्चे भी, आपका बेटा भी, आपके बेटे भी आपके इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और पत्नी तो खैर लाजमी ही है भरत की, पत्नी का
1: जी,
0: तो पत्नी से तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको तो आपकी क्रिटिक भी होना है और प्रशंसक भी होना है। और आपकी पत्नी मेरे
1: बिल्कुल
0: ख्याल से दोनों काम कर रही है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल आरती जी।
0: क्या नाम है आपकी पत्नी का?
1: मेरा पत्नी का नाम सुचिता।
0: अरे वाह, बहुत खूबसूरत। हमारा भी उनको आदाब कहिएगा। तो
1: जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, जरूर।
0: आपको आपको इतना अच्छा सिंगर बनाने में जरूर उनकी भी पूरी की पूरी भागीदारी है, ठीक
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: है? तो आइए अब इस पादान पर आपकी आखिरी गजल सुनते हैं प्रोग्राम की, जो आपने गाकर भेजी है। कोई महंगी बहुत ही शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो, महंगी हुई शराब तो थोड़ी थोड़ी पिया करो, नहीं तो ज्यादा पिया करो। दोस्तों, भारत ने कितनी जबरदस्त गजल गाई है, सुनते हैं, मजा उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं। महंगी है या सस्ती, ये तो पी के पता चलेगा। आइए सुनते हैं।

0: वाकई भरत जी, आपने साबित कर दिया, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, पीनी थोड़ी थोड़ी ही चाहिए। ठहर ठहर कर कितने ठहराव से आपने इसको गाया है, बहुत खूबसूरत।
1: थैंक यू सो मच आरती जी।
0: तो भरत जी, अब आपसे बात करके और आपकी सुरीली जीवन यात्रा को जानकर हमारा दिल तो बेहद बेहद प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। हमारी इस महफिल के आखिरी पड़ाव पर आप ये बताइए कि आपकी जिंदगी का फलसफा क्या है, क्या सोचते हैं आप जिंदगी के बारे में, और हमारे रेडियो टांटिया भील और रेडियो एसएन के जितने भी हमारे तमाम जो लिसनर्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, थोड़ा प्रिसाइसली जरूर बता दीजिए।
1: जी, मेरी जिंदगी का फलसफा बिल्कुल साफ और क्लियर है कि उम्र जो है वो सिर्फ एक संख्या है।
0: जी
1: इंसान जब तक सीख रहा है ना और अपने जुनून को जी रहा है, वो हमेशा युवा ही होता है। दूसरा जो है वो जीवन में अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और अगर श्रोताओं को मैं कुछ पैगाम देना चाहूंगा तो मैं इतना ही कहूंगा कि अपने भीतर के कलाकार को जिंदा रखें,
0: जी
1: परिवर्तन को गले लगाइए और प्रेम और सुरों को बांटते रहिए।
0: बिल्कुल
1: और एसएन रेडियो और रेडियो तंत्या भील को हमेशा सुनते रहिए। और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पैगाम भरत जी आपका, और आपके जीवन का ये फलसफा और आपका ये पैगाम सचमुच हर किसी के दिल में एक नई उम्मीद और प्रेरणा जगाएगा। कॉरपोरेट की व्यस्तताओं से लेकर संगीत के इस रूहानी सफर तक आपकी ये यात्रा हम सभी के लिए एक मिसाल है भरत जी, हमारे शो पर आने के लिए। और इतनी हसीन बातें और इतनी समझदारी से आपने जिस तरीके से समझाया, साझा करने के लिए आपका दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। तो
1: शुक्रिया
0: दोस्तों,
1: आरती जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज की महफिल में बस इतना ही। चलते चलते बस यही कहूंगी कि सफर में मुस्कुराकर चलना सीखो, हर एक लम्हे में ढलना सीखो, जुनून हो दिल में तो मंजिल मिलेगी जरूर, सुरों की तरह हवाओं में घुलना सीखो। तो इसी नोट पर अपने दोस्त आरती रॉय को अब दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते भी रहिए 90.8 FM पर रेडियो टांटिया भील और रेडियो SN। और आप अपने अपनों का ख्याल रखिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।
2: तो दोस्तों, गजलें खत्म हो जाती हैं लेकिन उनके अल्फाज और एहसास हमारे साथ ही रह जाते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी कुछ नई और कुछ दिल के करीब गजलों के साथ। आरती जी फिर से हाजिर होगी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: तो किसान भाइयों, ब्रेक ना बाद एक वक्त फिर देखी स्वागत से तमारो रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबवानी आवाज पर। किसान भाइयों हूँ से आरजे राकेश अने आज आपू हमली रासे कार्यक्रम खेतीवाड़ी मा सब्जी वर्गी खेती ना बारा मा। तो सालो कमता भाई आपड़ा कार्यक्रम ने आगे बढ़ाओ अने आपड़ा झाबवा जिला ना किसान भाइयों ने बताड़ो सब्जी वर्गी खेती ना बारा मा जानकारी।
1: तो किसान साथियों हूँ कमता डामोर, आज खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना अंतर्गत किसान भाइयों ने वेल वाली फल जो कि कद्दू खीरा अने तरबूज नी खेती ना बारा मा जानकारी हमलावीरो से। तो किसान भाइयों, कद्दू गरीबों नो लोकप्रिय सब्जी से अने इनी खेती पूरा भारत मा करी जाय से। कासा फल सब्जी ना रूप मा उपयोग कर्या जाय से अने पाकेला फलों ने सब्जी जेम अने कुछ मिठाईओ भी बनायो जाय से। पाकेला कद्दू पीला रंग ना रहेशे अने इनमा केरोटीन नी मात्रा भी पाई जाय से। इना फूल ने भी रोज पकाड़ी खाते खाए से। इनो उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा अने उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप थी करी जाय से। जलवायु कितो किसान भाइयों, कद्दू हारू गर्म जलवायु की जरूरत पड़े से अने कद्दू नी खेती हारू शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहे से। इन्हें हारू 18-30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम नु रहू जरूरी से। इनथी गर्म तर बेहे मौसम में भी उगाड़े जाए से।

0: રૂપિયા ભીલ 90.8 FM આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: હું છે આરજે રાકેશ
2: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
1: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર.
3: નમસ્કાર કિસાન ભાઈઓ, સ્વાગત છે તમારો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. હું છે આરજે રાકેશ અને રોજની જેમ તમારી વસમાં આજ ફેર કાર્યક્રમ ખેતીવાડી લઈને હાજર થયો છે. અને કિસાન ભાઈઓ, હું રોજ તમારી વસમાં ખેતીવાડી દેખા જોડાયેલા મુદ્દા, ખેતીવાડીની સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાતો લઈને રોજ એના સમય પર હાજર થતો રહું છે. તો કિસાન ભાઈઓ, આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપુ વાતો સાંભળવાના છે કડકનાથ મુરગી પાલનની. અને હાથે હાથ એવા આપણા ઝાબવા જિલ્લાના કિસાન ભાઈ અને દેશના અલગ અલગ ખૂણાના કિસાન ભાઈઓની કહાની સાંભળું, ત્યાં મુરગી પાલનની ખેતી કરીને કેવી રીતનો અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ રહ્યા છે. તો ચાલો કિસાન ભાઈઓ, હા વાર નીકળી અને શરૂઆત કરી આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડીની.
4: કડકનાથ મુર્ગે કી એક નસ્લ હૈ જિસે કાલી માસી ભી કહા જાતા હૈ. યે મુર્ગે પૂરી તરહ કાલે હોતે હૈ. કડકનાથ મુર્ગે કા ખૂન ઓર માંસ ભી કાલે રંગ કા હી હોતા હૈ તથા ઇનકે અંડે સુનહરે રંગ કે હોતે હૈ. ઇનકી ઉત્પત્તિ મધ્ય પ્રદેશ કે ધાર ઓર ઝાબવા જિલે સે હુઈ હૈ. ઇન પક્ષીઓ કો જ્યાદાતર ગરીબો આદિવાસીઓ દ્વારા પાલા જાતા હૈ. इसके स्वास्थ्य से जुड़े फायदों को देखते हुए इसकी मार्केट में मांग अधिक रहती है और इसकी गुणवत्ता के कारण ये काफी महंगा भी बिकता है. हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने भी इन मुर्गों को पाल रखा है और कड़कनाथ मुर्गे से वे कड़क कमाई करते हैं.
3: તો સાલો કિસાન ભાઈઓ, હામળી એક એવા સફળ કિસાનની કહાની, ત્યાં કડકનાથ મુર્ગી ફાર્મ ખોલીને ઘણો અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ રહ્યા છે.
5: તો યે જો ફાર્મ હૈ આપકા, કોન સા બર્ડ હૈ અભી યહાં પર?
6: યે સારા કડકનાથ હૈ.
5: કડકનાથ હૈ. કિતના બર્ડ હૈ અભી?
6: અભી 2200 બર્ડ હૈ.
5: 2200 બર્ડ હૈ. છોટા બર્ડ શરૂ કર કિયા થા આપને?
6: છોટા બર્ડ ભી સ્ટાર્ટ કિયા થા, કુછ લિંક બર્ડ ભી પરચેસ કિયા થા.
5: જી. अच्छा, जो ये देख रहा हूँ कई सेक्शन है इसमें बने हुए, कितने सेक्शन है
6: इसमें? चार सेक्शन है.
5: चार सेक्शन है. जो आपके ये चार सेक्शन है, पहला सेक्शन में इसमें बहुत सारे बर्ड है और बड़े हेल्दी बर्ड है. तो ये बर्ड किस तरह का बर्ड है?
6: ये बच्चा लाए थे हम
5: जी
6: एक दिन का
5: जी.
6: तो ये वो बर्ड तैयार हो रहा है. अच्छा. और ये अगले 10 दिन पे लेंग पे आ जाएगा.
5: अच्छा, अंडे पे आ जाएगा
6: अगले 10 दिन में? ये अंडे पे आ जाएगा
5: जी.
6: जी,
5: तो कितना बर्ड है ये वाला?
6: ये 1600 बर्ड है.
5: 1600 बर्ड ये. किस साइज का शेड है ये?
6: ये 30x150 का साइज है.
5: जो ये वाला है?
6: ये वाला जो साइज,
5: जो इनके लिए जो तैयार,
6: जो तैयार बर्ड के लिए है
5: जी. टैंक लगाया हुआ ऊपर?
6: नहीं, ग्राउंड वाटर चलता है. हाँ, टैंक लगा हुआ ऊपर.
5: टैंक से आता है ना?
6: टैंक से आता है पानी.
5: और जो फीड देते हैं, फीड कौन सा चल रहा है?
6: फीड चल रहा है इनका लेंग फीड. अब
5: लेंग फीड चल रहा है. तो अमूमन एक बर्ड कितना फीड ले लेता है ये?
6: एक 70 ग्राम के आसपास एक बर्ड, जो एडल्ट बर्ड होता है 70 ग्राम के आसपास फीड लेता है एक दिन में.
5: अच्छा भाई सर, ये बताइए, आपने कड़कनाथ से ही शुरुआत क्यों की और क्या विशेषता है इस बर्ड की?
6: जी, बेसिकली कड़कनाथ हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि इसमें ना बीमारियां बहुत कम होती हैं.
5: अच्छा.
6: तो जो नया, मतलब जो नया काम स्टार्ट कर रहा होता है, मेन नुकसान है पोल्ट्री में वो मोर्टलिटी की है
5: जी.
6: आप ये सोच नहीं पाते कि जब तक किसान, मतलब किसान ही समझ पाता है कि मैं किस वेस्ट पे काम कर रहा हूँ, तब तक काफी मोर्टलिटी हो चुकी होती है और फिर किसान थक जाता है.
5: कड़कनाथ एक टब ब्रीड है,
6: टब ब्रीड है, बीमारी कम आती है,
5: झेल जाता है.
6: हाँ, छोटी मोटी बीमारी हुई तो ये झेल जाता है.
5: यही वजह थी कड़कनाथ,
6: यही वजह थी कड़कनाथ स्टार्ट करने की
5: जी. और अभी अंडे आ रहे हैं?
6: हाँ, लेंग चल रही है. आगे लेंग, आगे लेंग बर्ड है,
5: दिखाइए.
6: हाँ.
5: अच्छा, जो लेंग वाला बर्ड है, अभी कितना बर्ड है आपके पास में?
6: अभी 400 बर्ड है.
5: 400 बर्ड है.
6: हाँ.
5: अंडे कितने आ रहे हैं उनसे?
6: 200 अंडे के आसपास डेली की,
5: 200 के आसपास प्रोडक्शन है, अंडे रोज आ रहे हैं.
6: हाँ.
5: तो जो अंडे हैं वो कहाँ सेल कर रहे हैं आप?
6: सोसाइटीज में जाते हैं. तो मैंने मार्केटिंग भी सोसाइटी में स्टार्ट की थी और चिकन भी जा रहा है पैक होके यहाँ से. ऑनलाइन डिलीवरी है चिकन की भी?
5: आप चिकन भी जो है
6: डिलीवर कर देते हैं,
5: ऑनलाइन भेजते हैं.
6: और एग भी ऑनलाइन डिलीवरी कर देते
5: हैं. एग क्या रेट जाता है आपका?
6: एग अगर हम ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें तो 800 रुपए की ट्रे जाती है.
5: 800 रुपए की.
6: और कोई फार्म से लेके जाता है तो 600 रुपए की ट्रे है.
5: 600 रुपए. सोशल मीडिया मार्केटिंग का बड़ा अच्छा फायदा उठा रहे हैं. बेशक इनका फार्म गांव में है, लेकिन ये ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू अपना चिकन और एग सेल करते हैं. कितने कितने बड़े सेक्शन बनाए और लंबाई चौड़ाई क्या है इस फार्म की?
6: इसकी जो चौड़ाई है पूरे फार्म की, और लंबाई 30 फुट चौड़ा है ये
5: जी,
6: और 300 फीट लंबा है ये
5: जी.
6: 30x300 का साइज है ये।
5: बाहर भी ओपन के लिए या फ्री रेंज के लिए भी?
6: फ्री रेंज के लिए।
5: और मुर्गियां चर भी रही हैं?
6: जी जी, फ्री रेंज में भी खोलते हैं इनको
5: जी।
6: सुबह मॉर्निंग टाइम का फ्री रेंज का होता है और इवनिंग टाइम फ्री रेंज का होता है।
5: ये खर्चा कितना है आपका, लीज का है या अपना?
6: नहीं, ये अपना लीज का है।
5: लीज का है?
6: हाँ जी।
5: क्या लीज जाती है?
6: 20,000 रेंट जाता है इसका।
5: 20,000 जाता है। और यहाँ पे वर्कर कितने रखे हुए?
6: दो वर्कर है
5: और संभाल लेते हैं।
6: बिल्कुल।
5: आप इसके अलावा क्या करते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या?
6: जी जी,
5: इस बारे में बताइए।
6: मैं MBA हूँ
5: जी,
6: ऑपरेशन से। मेन काम मेरा प्रॉपर्टी का है,
5: प्रॉपर्टी में डील करते हैं। और उसके बाद ये अपने?
6: ये मैंने अभी स्टार्टअप किया 8-9 महीने पहले।
5: 8-9 महीने से किया?
6: हाँ जी।
5: आप इतने अच्छे धंधे में, आप क्यों आए मुर्गी पालन में?
6: एक्चुअली है क्या सर, धंधा आदमी हर कोई चाहता है एक्सपेंड करना अपना
5: जी,
6: तो वो तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है।
5: अच्छा,
6: ये साइड बिजनेस के लिए एक बिजनेस और स्टार्ट
5: मतलब किया। समथिंग मोर?
6: हाँ जी, समथिंग मोर
5: जी, मतलब कुछ और कर ले हट।
6: बिल्कुल।
5: प्रेरणा कैसे मिली?
6: एक्चुअली है क्या, आप अगर मेरा बैकग्राउंड पीछे से देखेंगे तो मैं किसान हूँ।
5: अच्छा, कहाँ से हैं?
6: मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ।
5: अमरोहा से?
6: हाँ जी। तो बाप दादा ये किसानी की है सबने, तो किसान सी से थोड़ा जुड़ाव भी है, लगाव भी है। और हमने गाय भैंस पाली है, मतलब बचपन से ये देखा है चीजों करते हुए, तो एक मन भी था कि कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए। अभी तो ये स्टार्ट फेस है। इसके अलावा गोट फार्मिंग और अदर बर्ड भी रखने का प्लान है इसमें।
5: मतलब अभी आपने कड़कनाथ से शुरुआत की है, आगे आपने गोट फार्मिंग करनी है और पोल्ट्री की दूसरी ब्रीड भी आप रखने का इरादा है?
6: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
5: जी
6: जी।
5: इतने शानदार बर्ड है आपके
6: जी,
5: जो चिकन है,
6: एडल्ट चिकन है। हाँ जी,
5: चिकन पर्पस से आपने ये
6: चिकन पर्पस से अलग रखे?
5: बेसिकली जो सर्दियां चल रही हैं अभी
6: जी जी,
5: सर्दियों के लिए कोई खास इंतजाम किया?
6: वैसे तो जो एडल्ट बर्ड होता है सर्दी में इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा, मैंने पिछली सर्दी में भी देखा हुआ है इसको,
5: क्योंकि अच्छे खासे
6: बर्ड है। मेन जो दिक्कत रहती है वो बच्चों को रहती है, तो बच्चों के लिए हमने भट्टियां रखी हुई है। अगर हम बच्चे पालते हैं तो हम ये जो स्टार्ट होगा ये लेइंग पे जब आ जाएगा तो वो वाला सेक्शन खाली हो जाएगा,
5: मतलब ब्रूडिंग का भी आपने ऑप्शन रखा।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: आप इतने दिन से कर रहे हैं, 8-9 महीने हो गए आप
6: जी,
5: कैसा लगा आपको ये काम?
6: बहुत बढ़िया काम है
5: जी।
6: बस मेन काम है मार्केटिंग।
5: अच्छा,
6: अगर आपकी मार्केट नहीं है
5: जी
6: तो आप कुछ भी नहीं है, फिर तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा। तो
5: यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ आपने
6: ये? एक्चुअली है क्या, खाली इसने छोड़ा हुआ है कि जैसे ही वो लेइंग बर्ड स्टार्ट होगा
5: अच्छा,
6: ये सेक्शन बढ़ेगा
5: तो
6: इसमें आ जाएगा, उधर फिर बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे।
5: स्पेस ज्यादा चाहिए?
6: स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। हाँ जी।
5: यहाँ पे आपने अंडे की ट्रे रखी हुई है
6: जी,
5: मतलब स्टोर आपने यहाँ?
6: स्टोर यहाँ पे क्या हुआ है, रोज 2-4 दिन का माल स्टॉक होता है, क्योंकि दूर जाता है प्रोडक्शन ये।
5: हाँ।
6: जो मार्केटिंग ऑनलाइन होती है वो अलग, यहीं से डिलीवरी जाती है। जो बड़ा स्टॉक होता है वो एक साथ होकर जाता है,
5: क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने ट्रे बांधी हुई है।
6: जी जी,
5: मतलब
6: पैकिंग में जाता है,
5: रेडी
6: टू मूव है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
5: कड़कनाथ बहुत अच्छी ब्रीड है, और लेकिन लोग बीच में तैयार करने के बाद बेच नहीं पाए
6: जी,
5: आपने कड़कनाथ ही क्यों चुना?
6: बेसिकली है क्या, सारा गेम मार्केटिंग का था
5: जी,
6: और जिस जगह ये कड़कनाथ स्टार्ट किया वो विलेज स्टाइल में था।
5: अच्छा,
6: और विलेज में इसकी मार्केट नहीं है क्योंकि महंगा बर्ड है
5: जी,
6: अंडा भी महंगा है और चिकन भी महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता
5: जी।
6: इसलिए मैंने नोएडा और दिल्ली के जो पॉश एरिया है उनको मार्केटिंग चुनी है,
5: उनको टारगेट किया
6: और फ्लैट वाले क्लाइंट को टारगेट किया, कोठी वाले क्लाइंट को टारगेट किया
5: जी।
6: जो अच्छी चीज खाना पसंद करते हैं उनके लिए फिर रेट मायने नहीं करता, वो 1,000 और 2,000 कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए।
5: तो तैयार चिकन आप किस रेट बेचते हैं?
6: तैयार चिकन अगर यहाँ से जाता है ड्रेसिंग होके तो 1200 रुपए का जाता है।
5: डिमांड कैसी है और जो रेवेन्यू आपको आ रहा है वो कैसे आ रहा है?
6: देखिए डिमांड ठीक आने लगी है, क्योंकि सर्दी बढ़ने लगी है तो अब डिमांड और बढ़ रही है, मतलब रोज अब ऑर्डर आ रहे हैं। पहले शुरू में दिक्कत हुई मार्केटिंग उस लेवल तक स्टार्ट नहीं हुई थी, लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे, अब धीरे धीरे काफी लोगों तक हम पहुंच लगे हैं, माउथ टू माउथ पहुंच लगे हैं। इन लोगों को हम माल दे चुके हैं, उनकी भी दोबारा रिपीट ऑर्डर आने लगे हैं
5: जी,
6: तो अब जाके बेस तैयार होने लगा है माल का।
5: मैंने देखा है जिन लोगों को जरूरत है उनको मिलते नहीं है
6: जी,
5: और जिन्हें देना है वो वहाँ पहुंच नहीं पाते। कहीं ना कहीं ये मार्केट का ही खेल है।
6: बिल्कुल।
5: रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं हो पा रही है और जहाँ तैयार हो रहा
6: वहाँ माल बिक नहीं रहा,
5: पहुंच नहीं पा रहे।
6: बिल्कुल,
5: ये एक बहुत बड़ा गैप है इसमें।
6: जी जी जी जी
5: जी। और आपने अपना ये सोशल मीडिया के थ्रू आपने अपनी मार्केटिंग को एनरिच किया?
6: बिल्कुल
5: जी।
6: सोशल मीडिया से क्या होता है कि आप कम टाइम में ज्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं।
7: भारत में कड़कनाथ मुर्गा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले में ही मिलता है, किंतु कड़कनाथ की इस ब्रीड को अब तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाने लगा है। कड़कनाथ मुर्गे की तासीर गर्म होती है तथा देश से तकरीबन सभी हिस्सों में इस मुर्गे की काफी मांग रहती है। यह 3 प्रजातियों में पाया जाता है, जिसमें पेंसिल्ड, गोल्डन और झेड ब्लैक शामिल होते हैं। झेड ब्लैक मुर्गे के पंख पूरे काले होते हैं तथा पेंसिल्ड प्रजाति के मुर्गे का आकार पेंसिल की तरह होता है। वहीं गोल्डन प्रजाति के मुर्गे के पंखों पर गोल्डन छिटे पड़े होते हैं। कड़कनाथ मुर्गों की प्रजाति में आने वाला सबसे महंगा मुर्गा है। इसका रंग, खून, पंजे और आंखें आदि सब कुछ काले रंग के ही हैं, इसलिए इसे काले चिकन या काले मांस के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में इस मुर्गे की कीमत लगभग 1200 रुपये प्रति किलो से 1800 रुपये प्रति किलो तक है। अन्य मुर्गों के मुकाबले यह केवल 5 से 6 महीने के भीतर ही तैयार हो जाता है। कड़कनाथ मुर्गे चारे में बरसीम और चरी आदि खाते हैं, अतः इन्हें पालने में लागत कम लगती है और मुनाफा काफी ज्यादा होता है। अपनी कई खूबियों के कारण इस मुर्गे की सबसे अधिक मांग है। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह अन्य मुर्गों की तुलना में इनमें वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिसे खाने से शरीर को नुकसान नहीं होता। कड़कनाथ मुर्गा मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है और इसकी कीमत सामान्य मुर्गों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा भी बेहद ही ज्यादा पाई जाती है। साथ ही इसकी हड्डियां और मांस का कलर भी काला होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो सालों किसान भाइयों, हव हमली कड़कनाथ मुर्गानी वातियों मारा सहयोगी भाई कमता डामोर देखी भिल्ली बोली माँ।
8: तो किसान भाइयों, कड़कनाथ एवो कुकड़ू से जो कि अपना झाबुआ जिला में पड़वा वालों से अने तीनी प्रदेश भर में अने देश भर में इन्होंने काफी डिमांड से अने ज्यादा डिमांड अने उत्पादन कम रहने का कारण इन्होंने ज्यादा इन्होंने कीमत मिले से। तो किसान भाइयों, इन्हें पालवा हारू एक सही तरीका थी इन्हें देखरेख करनी पड़े अने इनो काळू मां अने पूरी दुनिया मां घणो ही कीमती अने घणो दुर्लभ अने कठिन मानी जाय से। तो किसान साथियों, हमने तक पूरा विश्व मां 25 से ज्यादा कुकड़ा नी प्रजातियों पाई जाय से, तिनमां काळा मांस ना नाम थी इनाने कड़कनाथ ना जाने से। तो इना इनमां भारत ना कड़कनाथ ने अलावा चीननी सिल्की अने इंडोनेशियानी आयाम सेनीनी अने वियतनामनी ओके नामनो कुकड़ो काफी प्रसिद्ध से। अने इना काला रंगनी मुख्य वजह थी फाइब्रोमिलेनोसिस नामनी एक अनुवांशिक गुण वालों रेसे अने इनमा मेलानिन पिगमेंट कड़कनाथ मांस हड्डी अने त्वचाना संचय थी थाय से। कड़कनाथ भारत नो एक पंजीकृत मुर्गानी एक नस्ल से अने तीना ने हाल ही में मध्य प्रदेश ने माहना हारू भौगोलिक संकेत GI टैग मिलो से। झाबुआ मध्य प्रदेश की पहचान यू आ हर को केवल झाबुआ में पाई जाने वाले कुकड़ा की एक प्रजाति कड़कनाथ में कारण पूरा देह में से। क्षेत्रीय भाषा में कड़कनाथ ने काला मासी ना नाम तो भी जाने जाए से, क्योंकि इहनो मांस चौंस कलंगी जुबान अने पोग नोख सांबड़ी इनी हगली काली रहेसे अने इनो लोई भी कालू रहेसे। तो किसान साथियों, क्योंकि तिने हारू मिलेनिन पिगमेंट नी ज्यादातर रेवा ने कारण रहेसे, इनमा

हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर, और आइए स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार।

आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में जो कलाकारा जो गायिका हमारे साथ हैं उनका नाम है खुशी गोस्वामी। बाकी की बातचीत हम खुशी जी से ही करेंगे और जैसा कि हम हमेशा करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं खुशी जी के ही गाए हुए इस गीत से।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। खुशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत आभार कि आप आए।
1: थैंक यू सर।
0: प्रोग्राम को शुरू करते हुए सबसे पहला छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म स्थान क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए, और अब भी आप कहाँ रहते हैं, उस जगह के बारे में कुछ रोचक बात बताइए।
1: सर, मेरा जन्म स्थान एक्चुअली मेरा बिहार में है, पटना। लेकिन उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए, और पटना की भी अलग कल्चर है वहाँ के, और महाराष्ट्र के अलग कल्चर है, तो मैंने दोनों कल्चर देखा है। तो मुझे महाराष्ट्र का कल्चर वैसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ लड़कियां ज्यादा सेफ लगती है मुझे। यहाँ के हर चीज में हम वाली बात नहीं है, सब अपने अपने में मस्त रहते हैं, तो मुझे महाराष्ट्र के कल्चर ज्यादा पसंद है।
0: वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से खुशी जी को ये एक्सपीरियंस अनुभव हो रहा है कि जहाँ वो रहती हैं वहाँ महिलाएं सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में और हमारे सोसाइटी में। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत खुशी जी का गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया गीत। खुशी जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: तो मैं बचपन में बहुत कुछ बनना चाहती थी, मेरा कुछ फिक्स नहीं था। मैं कभी भी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखती थी, मैं वही बनना चाहती थी, अगर वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। जबकि मैं साइंस से बहुत दूर हूँ, फिर भी मैं मुझे लगता कि नहीं नहीं मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी, या मैं प्राइम मिनिस्टर तक भी बनना चाहती थी। मेरा कुछ फिक्स नहीं था, मैं जिसको सक्सेसफुल देखती थी या मैं किसी को भी अच्छे आउटफिट में देखती थी ऑफिस जाते हुए, तो मुझे लगता था मैं यही बनना चाहती हूँ। मेरा कुछ फिक्स नहीं था।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मुझे इस बात पे याद आता है खुशी जी कि मैं, मेरे एक छोट फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसका एक छोटा सा बेटा जो काफ़ी छोटा था, तो एक बार मैंने उससे को पूछा बातचीत में ही कि बेटे आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो
1: जी
0: उसका जवाब इतना खूबसूरत था। उसने कहा कि साहब मैं बड़े होके एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा एक्टर बेटे क्यों? तो कहता है कि इसलिए अंकल कि एक्टर जो है वो सब कुछ बन सकता है, वो वकील भी बन सकता है, पुलिस वाला भी बन सकता है, मिलिट्री वाला भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, नेता भी बन सकता है, गरीब भी बन सकता है, अमीर भी बन सकता है, एक्टर सब कुछ बन सकता है। मैंने कहा क्या बात है, ये तो यार बड़ी लंबी सोच हो गई तुम्हारी। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी ही सोच आपकी रही शायद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने सुना कि खुशी जी बहुत सब कुछ बनना चाहती हैं। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि खुशी जी की सारी इच्छाएं पूरी हों। आइए सुनते हैं उन्हीं का गाया हुआ बहुत प्यारा सा ये गीत।

0: आते थे, तो वो हम लोग बहुत सारे कजन थे, बहुत सारे।
1: जी
0: तो वो जब आते थे ऑफिस से शाम को, तो बिस्किट का पैकेट लाते थे डेली, रूटीन था उनका।
1: जी
0: तो एक एक करके सबका नाम लेते थे, एक एक करके सबके उनके पास आता था, और वो एक एक बिस्किट, एक से दो किसी को नहीं देते थे, एक बिस्किट सबको एक एक करके देते थे। तो
1: ओके
0: वो मुझे आज भी याद है, अभी शायद एक एक पैकेट हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट, वो याद जो उसमें थी, वो आज नहीं है। ये चीज मुझे बहुत याद है, ये चीज मिस करती हूँ इस चीज को मैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी बात बताई आपने। हमारे बचपन में ऐसी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आज की डेट में भरपूर हमारे पास अवेलेबल होती हैं, बिस्किट के पैकेट्स कह लीजिए या अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें। लेकिन बचपन में मिलने वाला हमारे किसी अंकल से, नाना जी से, दादा जी से, दादी जी से कोई एक चीज़ हमेशा हमें याद रह जाती है। हमेशा उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं मनी मन भगवान से कि काश वो दिन हमें वापस आ जाए। बहुत खूब दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत खुशी जी का गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, आपने एक बिस्किट की बात की, कि आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है और क्यों?
1: पसंदीदा खाना मुझे आज के डेट में तो सभी कुछ पसंद है, फूडी हूँ मैं बहुत, लेकिन अगर बोले तो मुझे मोमो और चॉकलेट, ये दो चीज बहुत पसंद है।
0: ओह वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कई बार ऐसा हुआ है, मेरी मम्मी जो है, मैंने उनसे जब कहा कि मोमोज अच्छे लगते हैं या चलिए खा लेते हैं, तो वो पुराने ख्यालात की हैं, लेकिन ठीक है, नए ख्यालात भी उन्होंने एक्सेप्ट किए, बट समहाउ उनको मोमोज अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो क्रिस्प थोड़े से शायद नहीं होते हैं, वो उनको लगता है कि ये उबले हुए हैं। बट आई अंडरस्टैंड, काफ़ी हेल्दी फूड है मोमोज, उसमें क्योंकि बॉइल्ड है, इसमें कोई ऑयल नहीं है,
1: नहीं
0: तो इसलिए स्टिल इन कंपैरिजन टू अदर फूड।
1: आज मेरे पापा को भी नहीं पसंद है।
0: ओके ओके, तो दोस्तों आपने सुना कि खुशी जी को मोमोज पसंद है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया खुशी जी, ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आप गायिका हैं। ऐसा कौन सा गीत है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है, आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को, आपकी शख्सियत को सूट करता है? ऐसा कौन सा गीत है?
1: ऐसा गीत ये बोलना थोड़ा मुश्किल है इतने सारे गीत में, लेकिन आई थिंक जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये मेरे कैरेक्टर को सूट करता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है खुशी जी की। आफ्टर ऑल जो भाषा हमारे पास है, जो वर्ड्स हमारे पास हैं, जो सेंटेंसेस हमारे पास हैं, उनसे कंपोज किया हुआ कुछ एक विचार हमारी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है या नहीं, इस बात को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, आइए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही प्यारी गायकी, बहुत ही प्यारा संगीत। खुशी जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त के बारे में हमें बताइए।
1: मतलब उनके नेचर या फिर क्या?
0: हाँ, नेचर, बिहेवियर, उनके कुछ प्रॉपर्स, हाँ, मतलब, गुण।
1: गुड, मतलब उनके बारे में मैं ये इतना बता सकती हूँ कि अगर वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपको, मतलब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी वो एक टाइम पे अच्छे दोस्त बन पाए हैं।
0: बिल्कुल ठीक।
1: या मैं उनके बारे में अभी आपको बता पा रही हूँ, उसका मतलब वो इंसान ही बहुत अच्छा होगा, तभी मैं उनके, मतलब बैक में भी मैं उनके बारे में बता रही हूँ। तो है, मेरे भी दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उनकी एक क्वालिटीज है कि अगर आप नेगेटिव माइंड में चल रहे हैं किसी को लेके या किसी चीज को लेके, एकदम नेगेटिव बना लिए कि हाँ ये चीज मुझे कैंसिल करना है या नेगेटिव में ही हूं मैं, लेकिन वो आपको ऐसे पॉजिटिव बना देंगे उस टाइम पे कि आप सोचेंगे नहीं, हाँ सही, ये सही है, मैं गलत सोच रही थी। तो ये चीज उनमें, मेरे दोस्त में ये क्वालिटीज है, मतलब बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटीज। या मैं कभी कहीं भी स्टक कर जाती हूँ, फंस जाती हूँ, तो मैं पूछ लेती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे वहां से एग्जैक्टली अच्छे आंसर मिलेंगे, मैं वहां से निकल जाऊं, ये चीज है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही क्लियरली आपने अपने दोस्त को समझा है, उनकी क्वालिटी को समझा है कि वो किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, आपको नेगेटिविटी से दूर रखते हैं। बहुत ही सुंदर बात है ये। तो दोस्तों, आपने सुना, एक गीत भी सुनते हैं खुशी जी का गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया। खुशी जी, क्या आपका कोई निक नेम है, कोई ऐसा नाम है जो दोस्त यार रिश्तेदार मम्मी पापा आपको बुलाते हैं उस नाम से?
1: है, गुड़िया है, और भी बहुत सारे नेम है लेकिन गुड़िया ज्यादा है।
0: ऐसा कोई निक नेम जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो
1: हाँ
0: वो?
1: पसंद है लेकिन बता नहीं सकती।
0: चलिए कोई बात नहीं। तो ये गुड़िया नाम जो है, ये आपको किसने दिया? आपके माता पिता ने, या फ्रेंड्स ने, या भाई बहन
1: हाँ
0: ने?
1: नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने ही दिया है।
0: वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी क्यूट नेम। दोस्तों आपने सुना, खुशी जी का एक निक नाम है गुड़िया। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत खुशी जी का गाया हुआ।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत। खुशी जी, अगर आपको भारत के अलावा किसी और देश में रहने को मिले तो कहाँ रहना पसंद करेंगी आप?
1: आपने भारत में ही इतने सारे जगह हैं कि बाहर का सोचना मुश्किल है, लेकिन अगर मौका मिले तो मैं स्विट्जरलैंड जाना पसंद करूंगी।
0: ओके, क्यों?
1: अरे देखा ही है सिर्फ कि बहुत अच्छे लगते हैं मुझे देखने वहां पे, सब कुछ नेचर सब कुछ अच्छे ही लगते हैं मुझे, तो इसीलिए। अब चली ही जाती तो फिर मैं क्यों यहाँ पे बोलती कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगी।
0: वेरी नाइस, बिल्कुल
1: बस एक
0: ठीक,
1: ख्वाहिश है वहां जाने की।
0: बहुत बढ़िया, तो चलिए एक गीत सुनते हैं खुशी जी का गाया हुआ।

0: खुशी जी, अब हम हमारे प्रोग्राम के उस स्टेज पर आ गए हैं, उस मुकाम पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, नए सिंगर्स के लिए एक मैसेज दीजिए, कुछ संदेश दीजिए उनको।
1: मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी सी है, और कल किसके साथ क्या हो कोई बोल नहीं सकता है, इसलिए इसको खुल के जीना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि टाइम को लेके, मतलब आप टाइम को ये मत छोड़िए कि आप, अच्छा मेरे पास तो बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत ज्यादा ही टाइम है, नहीं, अगर ये टाइम आपका चला गया फिर आपके पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा, आप उस समय कुछ नहीं कर सकते हैं। तो टाइम का सबसे पहले आप उसको मतलब पकड़ के रखिए कि हाँ, टाइम को इम्पोर्टेंट दीजिए सबसे पहले। जीना, जिंदगी जीना, पार्टी करना, ये सब तो होता है, लेकिन एक बार अगर किसी चीज के लिए टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आता है। तो आप टाइम को सबसे पहले, प्रायोरिटीज टाइम को दीजिए, मैं यही बोलना चाहूंगा।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वक्त पर अपने काम को करते चलिए, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद वो लौट कर कभी नहीं आता।
1: बिल्कुल,
0: बहुत खूब।

0: दोस्तों, ये थी खुशी गोस्वामी जी, जिनके गीत हमने सुने, जिनके संदेश हमने सुने, जिनकी बातें हमने सुनी और बहुत बहुत एंजॉय किया। खुशी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: गीत पहले बना था, क्या बनी थी ये सरगम।
0: तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो, आपरी बातें।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।
1: होले होले धीरे धीरे कोई गीत मुझको सुनाए, गीत मन में जगाए।
0: आइए दोस्तों, आज के कलाकार का एक और एपिसोड आपके लिए हाजिर करता हूं। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, गायक हैं, टैलेंट हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ही आपसे बात करें। मैं तो बीच में एक कोरियर हूं, उनको आपसे कनेक्ट करने का एक माध्यम हूं। बाकी प्रोग्राम उनका है, सुनना हम सब लोगों को है। तो हमारे साथ मेहमान हैं राजीव कुमार शर्मा साहब, आज मौजूद हैं हमारे साथ। राजीव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सभी मेहमान जो आज आपके गाने, आपकी बातचीत सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए। थोड़ा उन्हें बताइए आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं आप।
2: सबसे पहले समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने का, ताकि मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो सकूं। सभी श्रोतागणों को मेरी ओर से तहे दिल से नमस्कार। मैं राजीव कुमार शर्मा हूं, आई एम फ्रॉम बेंगलोर, और सिंगिंग इज माय पैशन। और ओरिजिनली आई एम फ्रॉम पंजाब सर, आई एम फ्रॉम पंजाबी बेसिकली, आई बिलोंग टू पंजाब। एंड बिकॉज ऑफ सिंस आई एम वर्किंग विद PSU, सो इट्स ट्रांसफरेबल जॉब, सो हमें इधर से ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया बेसिस पे हमारी वो रहती है पोस्टिंग्स। सो एज ऑफ नाउ आई एम इन बेंगलोर फ्रॉम पास्ट 10 years। तो ऐसे ही सर जर्नी चल रही है हमारी। आई एम फ्रॉम प्रोफेशनली आई एम इंजीनियर बेसिकली, सो आई एम वर्किंग इन PSU एज ए जनरल मैनेजर।
0: ओके,
2: चलते चलते सर बस ये सिंगिंग मेरा एक पैशन था, तो धीरे धीरे इसमें आई वॉज नॉट नोइंग कि आई एम गुड एट सिंगिंग। तो ऐसी सर शुरुआत हो गई। सो व्हेन आई जॉइंड इन द इंजीनियरिंग कॉलेज एज ए प्रोफेशनल फॉर प्रोफेशनल डिग्री, तो सर उसके ड्यूरिंग द रैगिंग दे आस्क्ड मी टू सिंग ए सॉन्ग। तो सर जब मैंने वो गाना गाया तो उसके बाद सभी को इतना पसंद आया, तो देन आई रियलाइज कि मैं कुछ ठीक ठाक गा रहा हूँ। तो एंड वी वोंट बिलीव सर, आफ्टर दैट ड्यूरिंग दैट आफ्टर दैट इंसिडेंट, व्हेनेवर दे हैव कॉल्ड द न्यू कमर्स, नो जनरली देयर इज अ रैगिंग इज अ वेरी कॉमन यू नो इवेंट एवरीवेयर दे डू इट इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो व्हेनेवर दे यूज्ड टू कॉल मी, तो मेरे लिए यही होता था कि आप गाना गाओ। तो सर मैं धीरे धीरे इस तरह स्लोली आई रियलाइज कि आई एम ए सिंगर। दिस इज ऑफ यहाँ पे मेरी सिंगिंग की शुरुआत हुई।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों आपने जाना कि राजीव भाई कहाँ हैं, क्या करते हैं और सिंगिंग की शुरुआत उनकी कैसे हुई। चलिए शुरू करते हैं इस गीत प्रोग्राम को और सुनते हैं सबसे पहले उनके गाए हुए गीत और फिर वापस आते हैं राजीव भाई से बात करने के लिए।

0: तो राजीव भाई आइए आगे बढ़ते हैं और आपके संगीत के बारे में, जैसा कि आपने बता ही दिया कि कॉलेज में रैगिंग के दौरान आपसे हमेशा डिमांड की जाती रही कि आप गाइए गाइए गाइए, तब आपने महसूस किया कि यार मैं तो अच्छा गा रहा हूं, तो उसी को आपने फिर पैशन को आगे बढ़ाया। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। और अब जाहिर सी बात है, एक बड़ा ही नॉर्मल रूटीन सवाल किसी के भी मन में आ जाएगा आपकी बात सुन के कि आपको किस तरीके का संगीत पसंद है। कहने का मतलब है आप यही कहेंगे 99.9999% कि मुझे तो हर संगीत पसंद है।
1: जी, ऑल टाइप ऑफ।
0: हाँ, लेकिन पॉइंट मेरा ये है ना राजीव भाई कि किसी आप पार्टी में जाते हैं और बफे में 50 डिश लगी होती है तो 50 की 50 खाते हो आप? नहीं ना, आपको उसके अंदर जो चीज पसंद होती है वही अपनी प्लेट में लेते हो। तो उसी तरीके से म्यूजिक में आपको पर्सनली क्या पसंद है? गजल, भजन, फोक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, सूफी या फिर सिंपल, ऑल अराउंड अवेलेबल, बॉलीवुड, क्या पसंद है आपको थोड़ा वो बताइए ना।
1: सुनिए भाई, मतलब जो भी ऐसा गाना जो दिल को छू जाए है ना, वो हमें पसंद है। रोमांटिक सॉन्ग्स, क्योंकि सर हम अपने बचपन से हम अपने ये जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, राजेश खन्ना, देवानंद, धर्मेंद्र, किशोर कुमार, जो जो इन पे फिल्माए गए हैं, किशोर कुमार, रफी साहब, इनके गाने सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं
0: जी।
1: तो ऑल टाइप ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स, स्पेशली सैड सॉन्ग्स, हैप्पी नंबर्स, सब यही मेरी पहली पसंद रहे हैं। हाँ, बीच बीच में मैं कुछ गजलों को भी सर सुनना पसंद करता था, जैसे वो भी कोई ज्यादा सिंगर नहीं, जगजीत सिंह।

0: आपके दिल को छू जाने वाला कोई गीत हमें बताइए, गुनगुना के बताइए कि जो आज जिस गीत को आप के आपके दिल को छुआ हो।
1: जी जी सर, जैसे अपना ये आपने सुना होगा, ये आपकी किस्म का एक गाना है, बड़ा अच्छा।

0: सही टाइप के जो
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारी, बहुत प्यारे अब गीत। तो दोस्तों आपने जाना कि राजीव जी किस तरीके के म्यूजिक को ज्यादा पसंद करते हैं और गाना भी पसंद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम ये गीत सुनते हैं जो राजीव जी ने एक्चुअली हमारे लिए तैयार किए।

0: जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए।
1: आहा।

0: बहुत सुंदर गायकी, बहुत ही प्यारे गीत। चलिए राजीव जी, आपके म्यूजिक के बारे में जाना, हमने ये जाना कि आप क्या काम करते हैं, अब आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, जिससे कि अलग रंग आपकी पर्सनालिटी के हमें दिखाई दे जाएं। एक तो गीत है ही, संगीत है ही, गीत संगीत के अलावा आपका सबसे सबसे फेवरेट मी टाइम आजकल क्या है? मतलब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, मी टाइम आजकल बड़ा फेमस टर्म है, तो उस वजह से मैं पूछ रहा हूं कि आपका सबसे फेवरेट मी टाइम क्या है?
1: श्री भाई, मैं जब भी फ्री होता हूं मैं म्यूजिक ही सुनता हूं, और यही मेरा सबसे बेस्ट स्ट्रेस बस्टर है। सिंस आई एम वर्किंग इन दिस गैस इंडस्ट्री बेसिकली, तो हमारा लाइफ बड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, तो व्हेनेवर आई गेट सम टाइम, फ्री टाइम फॉर मी, मैं सब प्रेफर करता हूँ कि मैं ट्रेवल करूँ, ट्रेवलिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक, दिस इज माई ओनली दिस मी टाइम यू कैन से।
0: बहुत खूब फॉर मी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों, इस सवाल को पूछने का पर्पज यही है कि आप अपने अंदर झांके, अपने को पहचानने की कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना पसंद करते हैं। राजीव जी ने बताया कि वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं जो राजीव जी ने हमारे लिए तैयार किए।

0: बहुत खूब राजीव भाई, जैसे आपने बताया कि आपकी जिंदगी काफी स्ट्रेसफुल है, आप जिस तरीके की इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप गीत सुन के अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीज करते हैं, तो क्या आपकी इंडस्ट्री में काम करते हुए आपको कुछ और वक्त मिलता है, कुछ दोस्तों के बीच में बात करना या दोस्तों से मुलाकात करना? तो बस यूं ही पूछ रहा हूं कि अपने किसी अच्छे से दोस्त के बारे में हमें बताइए, जिन्होंने आपको गाने के लिए मोटिवेट किया हो, हमेशा प्रोत्साहन दिया हो, तो हम आपके अगले गीत उन दोस्तों को डेडिकेट करना चाहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल समीर भाई, समय मिलता तो नहीं, लेकिन निकालना पड़ता है हमें कुछ अपनी पर्सनल हॉबीज को भी पूरा करने के लिए। तो इसीलिए सर हमारा, मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीकेंड पे मैं अपने यहाँ पे जो हमारे मित्र हैं उनसे मिले, और जो लाइक माइंडेड पीपल है मैं उनके साथ बैठ के अपना समय व्यतीत करता हूँ। अब रिसेंटली हमारे बड़ी अच्छी मेरी मित्र हैं वीना नायक जी, तो कई बार हम मिलते हैं तो बैठते हैं तो हम लोग कुछ गुनगुनाते हुए काफी गाने, कई बार वी यूज टू से टेंड सिंग, और फिर धीरे धीरे हम लोग कुछ गैदरिंग टाइप का कर लेते हैं, उसमें आके बैठ गए हम लोग, कुछ गा लिया, गुनगुना लिया, तो इससे बेहतर टाइम और कोई नहीं होता। उसी बहाने से सब लोग मिल भी जाते हैं एंड इट्स लाइक ए स्ट्रेस बस्टर, और एक दूसरे से बातचीत भी होती है, कुछ मन हल्का हो जाता है, क्योंकि आजकल के जमाने में चाहे मित्र कम हो लेकिन अच्छे हो, यही मैं कहना चाहूंगा। तो टाइम निकालना पड़ता है उनके लिए, लेकिन अदरवाइज जिंदगी तो सर ऐसा है कि आप काम करते रहोगे, तो अपने लिए कुछ वक्त समय अलग से निकालना बहुत जरूरी है।
0: ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए ये गीत हम राजीव जी के ही मित्रों को डेडिकेट करते हैं और फिर वापस आते हैं राजीव जी से बात करने के लिए, उनको और समझने के लिए।

0: बहुत खूब राजीव जी, अपने म्यूजिक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का क्या विचार है? मतलब आपकी सिंगिंग का कोई आपने टारगेट सेट किया है या कोई एजेंडा है कि मैं अपने म्यूजिक के बारे में ये करूंगा, आगे बढ़ूंगा, 2 साल बाद 3 साल बाद 5 साल बाद, मतलब कोई म्यूजिक एल्बम प्रोड्यूस करना, बनाना, या फिर स्टेज शोज करना, कोई ऐसा कुछ विचार है आपके दिमाग में?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुमित भाई, अभी तो मैं आई एम प्रेफरिंग क्रोकी सिंगिंग, क्योंकि व्हेनेवर वी गेट ए चांस वी गो टू द क्लब्स, वहां पे जाके हम क्रोकी सिंगिंग वगैरह करते हैं, वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन मेरा ये एक मैंने डिसाइड कर रखा कि इच्छा है मेरी, आप कह सकते हैं कि आप जब मैं रिटायरमेंट के बाद मैं सोचता हूँ, कभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, हार्डली 3 साल बचे हैं, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि पूरा का पूरा समय मैं ये लर्निंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स और अपना गायकी को और सुधारा जाए, क्योंकि एवरी डे इज अ लर्निंग डे फॉर एवरीवन। सो मैं यही कहूंगा कि देयर इज ऑलवेज चांस टू बिकम बेटर एंड बेटर, अपनी सिंगिंग को और सुधारूं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीखूं और अपनी एक एल्बम बनाई जाए, ये मेरा है सर टारगेट, और कुछ स्टेज शो किए जाए उसके बाद, जब थोड़ा सा आपके लोगों में आप पॉपुलर हो जाओ तो अपने कुछ स्टेज शो करने का भी बड़ा मेरा एक इच्छा रखता हूँ। आगे कितना हो पाता है वो तो ऊपर वाला जानता है सर।
0: ओके, नहीं नहीं सर, आपने सोचा है तो होगा, अगर सोचेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, सपने देखेंगे तभी पूरे होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए पहले तो अभी राजीव जी की ही गाए हुए इन गीतों का आनंद उठाएं और उनको शुभकामनाएं दें कि वो आगे बढ़ते हुए अपने स्टेज शोज करें और म्यूजिक एल्बम भी बनाएं।

0: बहुत खूब राजीव भाई, राजीव भाई बस हम उस जगह पर आ गए जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए, जो भी आपके मन में बात हो अभी आप उनसे कर सकते हैं। आप आज एक नए परिवार में जुड़े हैं, आज के कलाकार के परिवार में, तो बात कीजिए उनसे।
1: मैं अपने सभी सुनने वाले श्रोतागणों को बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपका एक लाइफ में पैशन हो उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। एक तो जो हम अपना काम जो जॉब करते हैं वो तो हमारा जरूरत है कि जिंदा रहने के लिए, आपको जीवन निर्वाह करने के लिए वो है। उसके अलावा आपको जो भी पैशन हो यू फॉलो इट। एंड हमें कभी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, बट वी आर द गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, सो वी शुड बी वेरी वेल डिटरमिन्ड एंड पैशनेट। चीजें होती हैं जैसा कि समीर भाई ने भी बोला कि जो आप डिजायर करो व्हाटएवर यू डिजायर वो इट हैपेंस, बट द ओनली थिंग इज यू शुड हैव अ स्ट्रांग डिटरमिनेशन। और इसके अलावा मैं गा के दो लाइनें सुनाऊंगा
0: प्लीज।
1: जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल इसे खो

0: बहुत खूब बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। राजीव भाई थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत मजा आया, आपके गीत सुनकर बहुत मजा आया। अपना ख्याल रखिएगा और गुनगुनाते और गाते रहिएगा। थैंक यू।
1: बिल्कुल, थैंक यू समीर भाई, आपका भी हमें समय देने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं अपने श्रोतागणों से रूबरू हो सकूं आपके द्वारा। वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू सर।
0: तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में।

सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।

हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे भी मत गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं।

0: इंग्लैंड का पादरी जोसेफ करुणा के आध्यात्मिक शक्ति में अटूट विश्वास रखता था। दीन हीन और बेसहारा लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। एक बार की बात है, एक दिन एक बहुत ही कुख्यात अपराधी पुलिस की निगाहों से बचता हुआ पादरी के घर पहुंच गया। पादरी ने उसे शरण दी, भोजन कराया और रात को आराम करने की भी स्वीकृति दी। अपराधी ने देखा कि पादरी की मेज पर चांदी के दो दीपदान रखे हुए हैं। पादरी सो गया तो उसने दीपदान उठाकर जेब में रखे और वहां से भाग निकला। वो कुछ ही दूर जा पाया था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने पुलिस को बता दिया कि वो दीपदान उसने पादरी के घर से चुराए हैं। पुलिस उसे पादरी के पास लेकर आई। पादरी को दीपदानों की चोरी का पता लग गया था। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, इसे छोड़ दीजिए, ये दीपदान तो मैंने अपनी इच्छा से इसको दिए थे। पादरी के शब्द सुनकर चोर पानी पानी हो गया। उसने उसी समय प्रभु में अपना दिल लगाने का निश्चय किया और भविष्य में अपराध न करने का संकल्प लिया। अब वो पादरी जोसेफ के शिष्य के रूप में दीन हीनों की सेवा का कार्य करने लगा।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जिंदगी जीने के तीन नियम। जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि हम दुनिया भर की उम्मीदों के हिसाब से जीते रहते हैं। कई बार हमारे कंधों पर इन उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। हम ताउम्र सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग नाराज ही छूट जाते हैं। अब बताइए, क्या जरूरत है सबको खुश करने की? जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो सफलता मिलने पर हम स्वयं ही हमारे लिए ही तालियां बजाने लग जाते हैं, बताइए। नियम नंबर दो, सफलता कोई जादुई चाबी नहीं है भैया, जो हमारे सामने किसी चांदी की थाल पर रखकर परोस करके दे दी जाएगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, उसमें समय लगेगा और पसीना बहाना पड़ेगा। हमारी हर तरह की कोशिशों का जोड़ ही हमारी सफलता है। हर दिन को कोशिशों के साथ ही हम खुद को बदलते हुए देख सकते हैं। समझदार व्यक्ति कहते हैं, सफलता उन छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ है जो हम रोज करते ही रहते हैं। नियम नंबर तीन, हार का डर हमें जीवन में कुछ बड़ा करने से रोकता रहता है। गौर कीजिए, इसी डर के कारण हम चुनौतियों से भागते हैं, बहाने ढूंढते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें मजबूत तो होना पड़ेगा। जब हम पूरी तरह से अपना दिल और दिमाग किसी काम के पीछे लगा दें, तब हमें कोई रोक नहीं सकता। सोचिए ना। फिर मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।